ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ए बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन दी।

0: नमस्कार
1: बच्चन साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमें डोनेशन ये
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: असली नोट
3: ब्रो, ये फटा है।
4: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
2: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
3: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
4: कब देवी?
3: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
4: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
3: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
4: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
3: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
4: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
3: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
4: नहीं देवी, जहां प्रेम बचा हो वहां समझो, जहां गलती हो वहां क्षमा करो, लेकिन जहां बार बार तुम्हारा मन टूटे वहां दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
5: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
6: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
7: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
8: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
6: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर इम्मू बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
7: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
9: ये क्या कर रही है?
10: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
9: ये केले के छिलके की।
11: Oh, no.
10: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
9: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा। आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: शुक्रिया।
1: श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

श्रोताओं, आज का ये गीतों से भरा सफर, ये सुहाने नए पुराने आपने तय किया आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। आज का ये सफर यहीं तक था, फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: समझ गए?
1: हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: यह श्योर।
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके

0: सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
1: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
2: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
3: कब देवी?
2: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
3: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
2: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
3: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
2: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
3: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
2: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
3: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
4: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
5: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
6: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
7: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
5: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर इम्मू बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
6: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
8: ये क्या कर रही है?
9: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
8: ये केले के छिलके की?
10: Oh, no.
9: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
8: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा, और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
9: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। सुबह के 9 बज गए हैं श्रोताओं, और ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का। आज के इस कार्यक्रम को श्रोताओं आपके समक्ष लेकर आई है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है, और साथ ही सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, जिसका समय आप सभी जानते हैं कि अब यानी कि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है, और आज खास दिन है, आज संडे है, और हफ्ते भर की भागदौड़ को अब कह दीजिए अलविदा, क्योंकि ये रविवार सिर्फ आपका है। अपनी पसंद के नगमों को सुनिए और साथ ही उन्हें गुनगुनाइए भी। श्रोताओं, आज की सुबह की चाय की चुस्की के साथ रेडियो ट्यून कर लीजिए, रेडियो गुंजन धर्मशाला ट्यून कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 घंटों का सफ़र जो है वो हम सभी मिलकर संगीत में बनाने वाले हैं। तो दिल में थोड़ा सा एक उत्साह, उमंग और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आ जाइए, कार्यक्रम में जुड़ जाइए। जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनका तो हम करते हैं स्वागत, और जो नहीं जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि फटाफट रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ ट्यून हो जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की शुरुआत हम रोज़ाना की तरह करेंगे एक विचार के साथ, और आज का विचार क्या कहता है चलिए देखते हैं। अपेक्षाएं जहां समाप्त हो जाती हैं, सुकून की शुरुआत वहीं से होती है। श्रोताओं, विचार को एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। अपेक्षाएं जहां समाप्त हो जाती हैं, सुकून की शुरुआत वहीं से होती है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हमने बातों के साथ कर दी है, इस विचार के साथ कर दी है, और अब देर है तो गीत की। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर भी आप हमीरपुर के ढटवाल की आवाज़ पर हमें सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। हमीरपुर के भी सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्रोताओं, जिस तरह से हम कार्यक्रम में आ बैठे हैं, और हमें भी इंतज़ार रहता है हमारे श्रोताओं का, क्योंकि जब तक आप सभी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे कार्यक्रम में भी बाहर नहीं आती है। तो बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, और लाइव पेज पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस समय हमें लाइव देख सकते हैं, और लाइव पर गुड मॉर्निंग मैम, इंदु जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग इंदु जी, और भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी दर्शक हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो श्रोताओं, एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, बहुत ख़ास हैं, और आप लोग जब कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो सच में कार्यक्रम में और मज़ा आ जाता है। तो श्रोताओं, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम के इस पहले प्यारे से गीत को।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और कार्यक्रम में आपने

सुना ये गीत आप आए बहार आई फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना श्रोताओं, और सच में ये गीत आप सभी के लिए ही था, क्योंकि आप जब आ जाते हैं कार्यक्रम के साथ जुड़ जाते हैं तो सच में कार्यक्रम में भी बहार आ जाती है। आप सभी जानते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में हम आपके साथ बातचीत तो करते ही हैं, साथ ही जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले मौसम की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो श्रोताओं, मौसम की धर्मशाला की अगर हम बात करें तो इस समय बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, हल्की सी गर्माहट जो है वो भी मौसम में है। तो कहीं ना कहीं अब बरसात का मौसम जो है वो हमें अलविदा कह चुका है या धीरे धीरे कहने वाला है, यानी कि बारिशों का ये दौर जो है वो अब थम सा गया है। तो बहुत सारे काम जो हैं आजकल के दिनों में लोग करते हैं, क्योंकि धूप खिलती है तो उसका भी हम फ़ायदा उठाते हैं। तो श्रोताओं, धर्मशाला की बात करेंगे तो धर्मशाला का आज का तापमान जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, और हवा में नमी की बात करें तो 72% हवा में नमी बनी हुई है। साथ ही श्रोताओं, हम यही कहेंगे कि मौसम की बात जब भी हम करते हैं तो मौसम पर हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव देखने में मिलता है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो कुछ एक प्रॉब्लम्स हमें होने लग पड़ती हैं, जैसे कि खांसी, जुखाम, बुखार। तो अगर आप भी इस समय इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं तो यही कहेंगे कि अपना ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम जब भी बदलता है तो ऐसा होना स्वाभाविक होता है। श्रोताओं, मौसम की बात हमने की, और मौसम के बाद अब हमें कार्यक्रम का मौसम जो है वो भी रंगीन बनाना है, यानी कि आपको लिए चलना है एक और प्यारे से गीत की ओर। तो चलते हैं कार्यक्रम में, लेते हैं एक और प्यारा सा गीत और आपको सुनवाते हैं इस गीत को। तो आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुनिए कार्यक्रम के अगले इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, मौसम की बात हमने की इस गीत से पहले, और थोड़ी सी और डिटेल में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अब विदाई की ओर अग्रसर है। हिमाचल में 22 से 25 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान मॉनसून की औपचारिक विदाई हो सकती है। अब तक प्रदेश में श्रोताओं सामान्य से 10% कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में मॉनसून के दौरान औसतन 631 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश 701 मिलीमीटर रहती है। साथ ही श्रोताओं, राज्य में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है और शनिवार को भी अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 20 और 21 सितंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो श्रोताओं, मौसम की जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है, और गीतों का जो सिलसिला है वो भी चला हुआ है। और अभी जो आपने गीत सुना था कार्यक्रम में, बेचारा दिल क्या करे, उसे हमने लिया था खुशबू फिल्म से। आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना उस गीत को। ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत श्रोताओं आज आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगे, और रोज़ाना आप लोग सुनते भी हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम क्या बात करने वाले हैं ज़रूर उस पर भी आएंगे, लेकिन फिर से थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको गीत सुनवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जुड़े रहते हैं और सुबह का ये समय है जब प्यारे प्यारे गीत कानों पे सुनने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उनके साथ झूम लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, और करना भी ऐसा ही चाहिए। श्रोताओं, हर कार्यक्रम में हम आपसे यही कहते हैं कि गीतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और गीतों के साथ थोड़ा सा समय अपने आप के साथ बिताइए, झूमिए और उन्हें गुनगुनाइए भी ज़रूर। तो चलिए कार्यक्रम में लेते हैं अगला गीत, जिसे हम लेकर आए हैं फुटपाथ फिल्म से। आशा भोसले और SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में ये गीत है, लीजिए एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और कार्यक्रम का समय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है। और श्रोताओं, समय हम इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमारे ऐसे भी रहते हैं जो कि हमारे साथ पहली बार जुड़े होते हैं या नए नए जुड़े होते हैं। रेडियो सेट को उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑन किया होता है और उन्हें पता नहीं होता है समय का। तो समय हम इसलिए बताते हैं कि अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो इस कार्यक्रम को आप रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सुन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे केंद्र से जो हैं वो प्रसारित किए जाते हैं, सुनवाए जाते हैं, उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और देखिए, आज संडे है तो संडे सबके लिए बहुत ख़ास रहता है, ख़ास करके हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संडे का इंतज़ार उन्हें बड़ी बेसब्री से रहता है कि एक संडे आएगा और हम अपनी नींद जो है अपने हिसाब से पूरी करेंगे। अदरवाइज़ सुबह सुबह जो है हम लोग बच्चों के सामने शोर करना शुरू कर देते हैं, जल्दी उठ जाइए, समय हो गया है, स्कूल के लिए तैयार होना है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सुबह उठकर जल्दी करने पड़ते हैं, लेकिन संडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें ना तो हम किसी को जल्दी जगाते हैं ना ही खुद हम जल्दी जगते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और एक दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से करते हैं। सभी परिवार के सदस्य आज के दिन इकट्ठा रहते हैं, समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। श्रोताओं, भाग दौड़ की इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं हमें संडे की ज़रूरत पड़ ही जाती है। पहले के समय की बात करें तो संडे हो ना हो, लेकिन हमारे पास समय रहता था अपने काम करने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, लेकिन आजकल समय मिलना बहुत मुश्किल है। और आप लोगों ने सुना भी होगा, जब हम किसी को कहते हैं कि आप मेरे घर आइएगा या कहीं पे मिलेंगे, तो यही कहा जाता है कि देखेंगे, अगर समय मिला तो ज़रूर हम ऐसा करेंगे। लेकिन वो समय गया कहाँ है ये समझ नहीं आता। समय तो यही है पर वो समय हमारे पास नहीं है, हमारे हाथों में नहीं है। तो आज का जो दिन है यानी कि संडे है, तो संडे को आप लोग क्या करना चाहते हैं वो आप देखिए। और कहीं अगर आपका कोई प्लान है घूमने फिरने का, तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर जा सकते हैं और अपने संडे को इन्जॉय कर सकते हैं। साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आप तक पहुंचाते हैं जानकारियां भी, तो चलते हैं जानकारियों की ओर, रुख करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं जानकारी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान 34.46 करोड़ रुपये की लागत की 7 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 1.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन सरयांच और इसके साथ 1.02 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंडी के खेल मैदान और 1.81 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित फल एवं सब्जी उपमंडी कुनिहार तथा 10.17 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दाड़ला घाट ISBT बस स्टैंड का उद्घाटन किया। साथ ही श्रोताओं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इन विकास परियोजनाओं के क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे तथा इनसे बुनियादी अधोसंरचना और आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि फल एवं सब्जी उपमंडी कुनिहार के क्षेत्र की लगभग 25 से 30 ग्राम पंचायतों के किसानों को लाभ मिलेगा। इस सुविधा

के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के बेहतर विपणन के अवसर उपलब्ध होंगे और उन्हें अपनी फसलों के उचित एवं लाभकारी दाम प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और इस जानकारी के बाद अब फिर से हम लौटेंगे कार्यक्रम में मनोरंजन की ओर। तो चलिए लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत और सुनवाते हैं आपको ये गीत जिसे हम लेकर आए हैं सौदागर फिल्म से। इस गीत को आवाज़ों से सजाया है सुखविंदर सिंह ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपके अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, इस गीत के बाद थोड़ी सी बात करेंगे आज के दिन को लेकर। आज संडे है और संडे की एक ख़ास बात रहती है श्रोताओं, सुबह जब हम स्टूडियो की तरफ आते हैं तो आज के दिन जो है वो सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है, ना तो स्कूल की बसेस मिलती हैं, ना ही कोई और अपनी अपनी काम की तरफ जो हम लोग रवाना हो जाते हैं 8:30 बजे के करीब, तो बहुत सारा ट्रैफिक देखने में मिलता है। लेकिन संडे के दिन सुबह जब हम निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में बहुत शांति और बहुत खालीपन सा थोड़ा सा लगता है, और ऐसे में सच में लगता है कि हमारे जितने भी श्रोता हैं या हम सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में रहते हैं इस समय और अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि निकलते नहीं हैं, निकलते हैं, लेकिन अपना आराम से एक शेड्यूल बनाने के बाद हम लोग जो भी हमारी रूटीन रहती है या आज के दिन की जो भी हमने रूटीन बनाई होती है उसको हम फॉलो करते हैं। तो श्रोताओं, कहीं ना कहीं संडे के दिन सुकून जो है वो हमें बाहर भी देखने में मिलता है, कोई हलचल जो है वो ज़्यादा नहीं होती है, और जब ट्रैफिक ज़्यादा नहीं दिखता है या ज़्यादा लोग अपनी गाड़ियों को लेकर नहीं निकलते हैं उस समय ऐसा लगता है कि प्रकृति भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ आप सभी समझते हैं श्रोताओं, और फिर से हम अगर कोरोना काल को याद करें तो आप सभी जानते हैं कोरोना काल में हम लोगों ने अपने घरों में अपने आप को कैद कर लिया था डर से, एक बचाव के लिए, और उस समय हम सभी की जो गाड़ियां हैं, हम सभी की जो वाहन हैं वो अपने अपने घरों में रहती थी और बहुत कम लोग जो हैं वो निकलते थे बाहर, और उस समय जो प्रकृति थी बहुत ही साफ़ सुथरी और सुंदर थी। तो श्रोताओं, कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि हमारे जो सुविधा के लिए जो सामान बने हैं, गाड़ियां बनी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति को भी झेलना पड़ता है। तो खैर, आजकल के इस समय में हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी या नहीं चलानी होंगी, हमें इसके बिना अब हमारा गुजारा भी नहीं है, लेकिन प्रकृति के बारे में सोचना हमें बंद नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम किस तरह से प्रकृति का साथ

दे सकते हैं, उसे कैसे साफ रख सकते हैं और उसे कैसे हरा भरा रख सकते हैं। बात फिर से पेड़ों पर आ जाती है कि पेड़ जितने ज़्यादा हमारी प्रकृति में होंगे हम उतनी ही साफ सुथरी सांस ले पाएंगे। और पेड़ों का कटान तो होता ही है, लेकिन एक रिवाज कह लीजिए या एक आदत अगर हम अपने में बना लें कि पेड़ों को लगाना है, या कहीं भी किसी के बर्थडे पर या किसी भी फंक्शन में हम जब जाते हैं तो हम बाज़ारों में जाकर बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेने की सोचते हैं। और सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे यही लगता है कि अगर आप किसी को दे सकते हैं तो कोई एक प्लांट खरीद के उसे ज़रूर दीजिए। लेने वाले को अच्छा लगेगा, साथ में प्रकृति का भी हम उसमें सहयोग कर पाएंगे। थोड़ा सा सहयोग अगर हम करें और ऐसी मुहिम अगर हम शुरू करें तो प्रकृति का साथ भी हम दे सकते हैं और साथ ही हर किसी के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम, पौधों के प्रति प्रेम और पौधों को लगाने की एक आदत जो है वो भी बना सकते हैं। छोटा सा सुझाव श्रोताओं कार्यक्रम के माध्यम से हमने दिया है और आप ज़रूर इसे फॉलो भी करेंगे। कुछ नहीं जाता, ज़्यादा नहीं 20-30-40-50 रुपए तक का कोई एक प्लांट लेकर हम किसी के बर्थडे पर, किसी की एनिवर्सरी पर उसे गिफ्ट कर सकते हैं। तो श्रोताओं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में आप सभी जुड़े हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को। दिल चले फिल्म से इस गीत को लेकर आए हैं श्रोताओं और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुनने वाले हैं इस गीत को।

श्रोताओ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में अभी आप सुन रहे हैं ये गीत और कार्यक्रम में 9:50 पर आप सुनेंगे समाचार। तो बाकी की बातें हम करेंगे समाचारों के बाद।

आज के मुख्य समाचार। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित। केंद्र सरकार के नशा मुक्ति उपचार केंद्र कार्यक्रम के तहत कल्पा में स्थापित नशा मुक्ति उपचार केंद्र महत्वपूर्ण परामर्श केंद्र बनकर उभरा। प्रदेश सरकार CBSE स्कूलों में भर्ती करेगी 2000 शिक्षक। निर्माण विभाग का कामकाज अनिरुद्ध सिंह, जबकि राजेश धर्माणी शहरी विकास का कार्य देखेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। यह

0: रैशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर, कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रैशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित लगे कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। केंद्र सरकार के नशा मुक्ति उपचार केंद्र कार्यक्रम के तहत जनजातीय जिला किन्नौर के कल्पा में स्थापित नशा मुक्ति उपचार केंद्र नशे की समस्या से प्रभावित लोगों और उनके परिवार के लिए उपचार व परामर्श का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इस केंद्र के लिए एम्स नई दिल्ली के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र से तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञ प्रशिक्षण भी मिल रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
2: उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्र की स्थापना के बाद से अब तक 272 बाह्य रोगी उपचार सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। अगस्त 2026 में ही केंद्र में 99 बाह्य रोगी उपचार सेवाएं दी गई है, जिनमें 21 नए पंजीकरण और 78 फॉलोअप उपचार शामिल है। उन्होंने कहा कि उपचार के लिए लगातार लोगों का केंद्र पहुंचना उपलब्ध सेवाओं के प्रति लोगों की बढ़ती सहभागिता को दर्शाता है। जिला प्रशासन नशा मुक्ति उपचार पुनर्वास और परामर्श सेवाओं को और मजबूत करने के लिए कल्पा में एक समर्पित पूर्णकालिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। प्रस्तावित केंद्र का संचालन सहयोग संस्था के माध्यम से किए जाने की योजना है। उपायुक्त ने नशे की समस्या से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों से समय रहते आगे आने तथा विशेषज्ञ मार्गदर्शन लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कल्पा स्थित नशा मुक्ति उपचार केंद्र में निशुल्क और वैज्ञानिक उपचार एवं परामर्श सेवाएं उपलब्ध है, जिनका लाभ उठाया जा सकता है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है
4: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
5: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
4: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश भर के CBSE स्कूलों में अगले 3 माह के भीतर 2000 और शिक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा की है। कल सोलन जिले के अर्की में राज्य स्तरीय शायर मेले के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य सरकार ने कुछ माह पहले प्रदेश में 150 CBSE स्कूल खोलने की घोषणा की थी तो इस निर्णय का विरोध किया गया था। इन स्कूलों में शिक्षकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर और बिना किसी सिफारिश से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों में CBSE शिक्षा काफ़ी महंगी है, जबकि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में भी इसी स्तर की सुविधाएं कम खर्च में उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पानी की कमी की आशंका जताई जा रही थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने समझौते की पूर्व निर्धारित शर्तों को स्वीकार कर लिया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिग्गल, भूमती और जयनगर के स्कूलों को CBSE स्कूलों में परिवर्तित करने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 34,46,00,000 रुपए की लागत की 7 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विदेश दौरे पर होने के चलते उनके विभाग का कामकाज अन्य मंत्रियों को सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग का कामकाज अनिरुद्ध सिंह जबकि राजेश धर्माणी शहरी विकास का कार्य देखेंगे।

0: होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विक्रमादित्य सिंह आधिकारिक कार्यक्रमों के सिलसिले में ब्राजील दौरे पर है। हिमालय की संस्कृति और जलवायु को बचाने का संदेश लेकर ग्यालवा डोखंपा लाहौल पहुंच गए हैं। ग्यालवा डोखंपा 24 सितंबर तक गर्षा इको पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि दारचा से शुरू होकर त्रिलोकनाथ धाम में समाप्त होगा। इस दौरान उनके साथ द्रुपोन खामताक रिनपोछे और सोमांग रिनपोछे भी साथ रहेंगे। अधिक जानकारी हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
1: इस पदयात्रा में भारत सहित भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम से आए करीब 500 लोग शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा का संदेश है जलवायु और हमारी विरासत की रक्षा। लाहौल में पिछले कुछ सालों में पिघलते ग्लेशियर, बदलते मौसम और बढ़ता बाढ़ का खतरा भी चिंता का विषय बन चुका है। पदयात्रा के दौरान जलवायु आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की जाएगी। ये यात्रा हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल चंबा में 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि जिले में इन बसों के संचालन से ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही प्रदेश में 1000 नई इलेक्ट्रिक और 200 डीजल बसें खरीदने जा रही है। अग्निहोत्री ने बताया कि परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पथ परिवहन निगम में सरकार जल्द ही चालकों और परिचालकों की भर्ती करेगी। उन्होंने चंबा में निर्माणाधीन बहुमंजिला कार पार्किंग का निरीक्षण भी किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर कांगड़ा जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अनुसंधान संस्थानों की कथित तौर पर अनदेखी का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि विभिन्न मामलों में जिले के महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि टांडा अस्पताल में मरीजों को मूलभूत दवाइयाँ, इंजेक्शन सहित अन्य जरूरी दवाओं के उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें भी सामने आ रही है। अभी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, हिमाचल में दूसरी जगह काम कर रहे सभी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति रद्द, करीब 2500 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर, कार्मिक विभाग ने मूल स्थान पर लौटने के दिए आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, शिक्षा निदेशालय ने सभी डेपुटेशन आदेश किए रद्द। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, हिमाचल में 2000 शिक्षकों की बंपर भर्ती, मुख्यमंत्री सुक्खू का ऐलान, CBSE स्कूलों में देंगे सेवाएं, प्रदेश के बचेंगे 3000 करोड़। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, मेरी शर्तों पर हुआ किशाऊ बांध समझौता, दबाव के बावजूद प्रदेश के हितों के लिए अड़ा रहा। दैनिक भास्कर की एक खबर है, अब पंचायतों को जल्द मिलेंगे 16वें वित्त आयोग के 481 करोड़ रुपए। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, मंत्री अनिरुद्ध सिंह को PWD और राजेश धर्माणी को सौंपा UD का अतिरिक्त जिम्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित। केंद्र सरकार के नशा मुक्ति उपचार केंद्र कार्यक्रम के तहत कल्पा में स्थापित होगा नशा मुक्ति उपचार केंद्र, महत्वपूर्ण परामर्श केंद्र बनकर उभरा। प्रदेश सरकार CBSE स्कूलों में भर्ती करेगी 2000 शिक्षक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह के विदेश दौरे के कारण लोक निर्माण विभाग का कामकाज अनिरुद्ध सिंह जबकि राजेश धर्माणी शहरी विकास का कार्य देखेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 11:00 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, समाचारों के बाद और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा, और समाचारों के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में और सभी को एक बार फिर से सुषमा की प्यार भरी नमस्कार और गुड मॉर्निंग। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत फिर से हम करेंगे, पहले एक गीत सुनेंगे, उसके बाद हम ज़रूर आज की बात पर भी आएंगे। तो चलिए पहले सुनते हैं इस गीत को जिसे हम लेकर आए हैं मैंने प्यार किया फिल्म से। इस गीत को आवाज़ों से सजाया है लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम ने।

श्रोता कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम में श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कुछ ना कुछ बात जरूर करते हैं, कोई ना कोई विषय जो है वो लेकर आते हैं। और श्रोताओं, आज के जो विषय, यूँ कह लीजिए कि जिस मुद्दे पर बात करनी है, वो ये है कि गलतियों से हमें सीखना शुरू करना चाहिए। कई बार हम लोग गलतियों से हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर गलतियों से हम कुछ सीखें तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना और आसान हो जाता है। और कहते भी हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है। गलती हर किसी से होती है, आपसे भी हुई होगी, मुझसे भी होती है, हम सभी से गलती हो जाती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि गलती हुई है या नहीं है, असली सवाल तो ये है कि गलती होने के बाद हमने उसे क्या सीख ली या क्या उसे हमने सीखा। कई बार श्रोताओं, हम अपनी एक छोटी सी गलती को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने गलत किया, इसलिए हम अच्छे इंसान नहीं हैं। कहते हैं कि अपनी गलतियों पर पछतावा होना भी बहुत ज़रूरी है, और होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से आगे क्या सीख लेनी चाहिए वो डिपेंड करता है हम पर, और हमें अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहिए। श्रोताओं, जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो कई बार वो चलते चलते गिर जाता है, तब हम बच्चे को ये नहीं कहते कि अब तुम कभी चल ही नहीं पाओगे या तुम नहीं चल सकते हो, हम उसे कहते हैं कि एक बार फिर से उठो, फिर से कोशिश करो, ज़रूर चलना सीख जाओगे। बिल्कुल उसी तरह से ज़िंदगी में भी कई बार बहुत सारे ऐसी जगह पर हम लोग गलत हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उस समय हमें अपने आप को गिल्टी फील नहीं करवानी चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए और हम आगे ऐसी गलती ना करें, इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए। और श्रोताओं, कहते हैं कि गलतियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जो हमें हमारी गलतियाँ ही सिखाती हैं। एक बार गलती होने के बाद हम दोबारा उस गलती को नहीं करते हैं, और अगर ऐसी गलती होने वाली हो तो हमें अपनी पुरानी गलती याद आ जाती है। तो बिल्कुल श्रोताओं, गलतियों से घबराना नहीं है, और गलतियां हो जाएं तो उन गलतियों के लिए पछतावा ना करके आगे के लिए हमें सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कार्यक्रम में भी हम आगे बढ़ेंगे, और अब आपको लेकर चलेंगे दिल्ली की ओर, यानी कि आपको सैर करवाएंगे दिल्ली की। तो चलिए, तीन बहुरानियाँ इस फिल्म का गीत अब आप तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। श्रोताओं, इस गीत के बाद आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे आजकल के समय में हमें कब कौन बेवकूफ़ बना दे पता भी नहीं चलता, धोखाधड़ी हो जाए तो ऐसे में बहुत सारी खबरें, बहुत सारी जानकारियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर हम कहीं ना कहीं सतर्क हो जाते हैं और सतर्क रहना भी चाहिए श्रोताओं। और कहते हैं कि जहाँ हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम कुछ कमा लेंगे और कई लोगों की बातों में या कई लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं, एक ऐसी ही जानकारी श्रोताओं आपके साथ साझा करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे किसी के साथ धोखाधड़ी हुई। कंपनी के लिए एक ऑनलाइन काम करने के नाम पर एक महिला से श्रोताओं 1,99,000 की धोखाधड़ी की गई है। बाद में महिला को बताया गया कि यदि रुपए कमाने हैं तो लोगों को इस कंपनी के साथ जोड़ना होगा। हालांकि रुपए इन्वेस्ट करने से पहले महिला को ये जानकारी नहीं दी गई थी। इस बात का पता चलने पर जब महिला ने काम करने से मना कर दिया और अपने रुपए मांगे तो रुपए देने से इनकार कर दिया गया। तंग आकर महिला ने रुपए लगाने के लिए प्रेरित करने वाली महिला तथा संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की जाँच जो है वो शुरू कर दी है। मामला पुलिस थाना नादौन में दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने बताया श्रोताओं कि एक महिला निवासी गांव व डाकघर सलेटी तहसील रक्कड़ जिला कांगड़ा अध्यापिका के तौर पर कार्यरत थी। उसने ऑनलाइन काम कर रुपए कमाने की सलाह दी। तो पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। तो श्रोताओं देखिए, कहते हैं ना कि कमाना हर कोई चाहता है कि हम अच्छी इनकम कमाएं, अच्छे पैसे कमाएं, घर पर बैठकर ऑनलाइन कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे कि हम अपनी गुजर बसर कर सकें या हम कहीं बाहर जाकर भी अपने लिए अपने परिवार के लिए कमाते हैं। लेकिन जहां ऑनलाइन बात आती है वहां पर हमें ज़रूर टटोल लेना चाहिए कि वो कौन है, कौन सी कंपनी है, क्या हम काम करने वाले हैं, कहीं हम किसी धोखे के शिकार तो नहीं होने वाले। ये सब बातें पहले अगर हम जांच पड़ताल कर लेंगे तो एक बहुत बड़े धोखे से बच सकते हैं। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि आजकल के समय पर विश्वास कीजिए लेकिन खोजबीन पहले कर लीजिए। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले हम सतर्क रहें और हर चीज़ की जानकारी ले लें। अगर हमें लगता है कि यहाँ काम बिल्कुल सेफ है, सही है, तभी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस जानकारी के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। खुदा गवाह इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं। इस गीत को कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अभी आपने सुना ये गीत, बिछड़ा यार मिला दे। बिल्कुल श्रोताओं, बहुत सारे यार ऐसे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में होते तो हैं लेकिन इस भीड़ में कहीं गायब हो जाते हैं। यानी कि अगर अपने स्कूल्स की बात करें, हम स्कूल फ्रेंड्स की बात करें, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो हमें याद तो होते हैं लेकिन ना उनका कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास होता है, ना ही वो हमें कहीं सोशल मीडिया पर मिलते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है श्रोताओं? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ज़रूर होता है। मेरी भी एक स्कूल फ्रेंड थी जो कि मुझे मिली नहीं नंबर। खैर, उस समय तो मोबाइल फ़ोन इतने होते नहीं थे और ना ही हमने एक दूसरे का लैंडलाइन नंबर कभी एक्सचेंज किया, लेकिन अब कभी अगर सोचें कि ढूंढा जाए तो अगर हम लोग फेसबुक खोल लें या सोशल मीडिया पर कोई और जगह देखें, ढूंढें उसके नाम से भी, तो कई बार वो दोस्त हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसा होता है। अब बोलते तो हैं कि सोशल मीडिया का समय है और हर किसी को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ यार, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें मिले ना मिले लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो हमेशा रहते ही हैं। खैर, कार्यक्रम में आपने सुना इस गीत को और इस गीत के बाद श्रोता हम फिर से आगे बढ़ेंगे और अपनी बात पर आएंगे। हम बात कर रहे थे गलतियों से हारना नहीं है, हमें सीखना शुरू करना होगा। अगर श्रोताओं पढ़ाई में कोई गलती हुई हो तो उसे समझना चाहिए। अगर किसी रिश्ते में आपसे गलती हुई है तो अपनी बात पर विचार ज़रूर कीजिए। अगर काम में कोई गलती हुई है तो उससे सीखकर अगली बार बेहतर करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी सीख हमारी सबसे बड़ी गलती से मिलती है। गलती जो है श्रोताओं, वो हमें बताती है कि हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ थोड़ा धैर्य रखना है और कहाँ अपने फैसलों पर दोबारा विचार करना है। तो आज से अपनी गलतियों से भागना बंद कर दीजिए, उन्हें स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। श्रोताओं, जैसे एक छोटे बच्चे को हम लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, जब हम लिखना सिखाते हैं तो उसे पेंसिल भी पकड़ने नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने पर वो आधी तिरछी रेखाएँ जो है वो खींचना शुरू कर देता है। लेकिन तब अगर हम सोच लें कि ये कुछ भी नहीं कर सकता और इससे गलतियाँ तो होती ही रहेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी गलतियों पर अगर सुधार करेंगे, अगर हम उस बच्चे को बार बार सिखाएंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो कहीं ना कहीं वो बात बच्चे के दिमाग पर चली जाती है और बच्चा दोबारा जब वो चीज़ करने लगता है तो उसे वो बात याद आती है कि ऐसे नहीं, इस चीज़ को ऐसे करना है, और कहीं ना कहीं गलती वो सुधर जाती है। तो यही बात हम पर भी लागू होती है। अगर हमसे गलतियां होती हैं तो उन गलतियों से सीखिए कि कहां हमसे कोई चूक रह गई, कहां भूल हो गई, कहां हमसे गलती हुई है, अगली बार हम इस गलती को नहीं दोहराएंगे। और कार्यक्रम में अब फिर से आपको लिए चलेंगे गीत की ओर, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस छोटे से ब्रेक के बाद ज़रूर कार्यक्रम में आपको सुनवाया जाएगा गीत, और गीत को सुनने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में इस ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमने कहा था कि आपको इस ब्रेक के बाद सुनवाएंगे गीत, तो चलिए लेते हैं इस गीत को। और श्रोताओं, उम्मीद करूंगी कि आप इस गीत को ध्यान से सुनेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल श्रोताओं, और इस गीत को सुनिए। खून भरी मांग से लिया गया ये गीत है और आशा भोसले ने आवाज़ से सजाया है।

बिल्कुल श्रोताओं, प्यासे को जाना पड़ता है, सागर कभी आया नहीं। और ये गीत सच में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा कर गया है। बहुत प्यारा गीत था श्रोताओं, और ज़रूर आपने इसे इंजॉय किया होगा। थोड़ी सी बात इस गीत को लेकर करेंगे श्रोताओं। ये जो गीत है, जीवन को एक खूबसूरत नज़रिए से देखने की सीख देता है। जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। इसका भाव यही है कि ज़िंदगी में परेशानियां, मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन उनके बीच भी खुश रहने, उम्मीद रखने और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने के लिए अनगिनत रास्ते मौजूद हैं। गीत हमें ये याद दिलाता है कि सिर्फ ज़िंदगी गुजारना ही जीना नहीं है, बल्कि हर पल को समझना, रिश्तों की कद्र करना और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना ही असली मायने में जीना है। कभी कभी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन्हें देखने का हमारा नज़रिया हमारी खुशी तय करता है। तो श्रोताओं, ऐसे गीत हम लेकर आते हैं और इन गीतों को आप ज़रूर इंजॉय भी करते होंगे। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे श्रोताओं की। पिछले दिन राधाअष्टमी का दिन था और सभी ने अपने आसपास जहां पर भी जिसे कहते हैं ना नोन, उसका ज़रूर फ़ायदा लिया होगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मणिमहेश यात्रा जो है वो राधाअष्टमी शाही स्नान के दौरान करीब इस बार 20,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र डल में आस्था की डुबकी लगाई है। शुक्रवार को श्रोताओं 1:02 पर आरंभ शाही स्नान का सिलसिला शनिवार को दोपहर बाद 3:28 तक जारी रहा और शाही स्नान की अवधि समाप्त होते ही मणिमहेश यात्रा 2026 का आधिकारिक तौर पर समापन हो गया है। और आज के दिन मणिमहेश यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात स्टाफ भी वापस लौट आएगा। श्रोताओं, इस वर्ष मणिमहेश यात्रा का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ जो है रक्षाबंधन के दिन हुआ था। इसके बाद से श्रद्धालुओं के लगातार पवित्र डल में डुबकी लगाने के लिए जाने का सिलसिला जारी रहा। जन्माष्टमी के छोटे नहान पर करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र डल में स्नान किया था। राधाअष्टमी के शाही स्नान यानी कि बड़े नहान में पवित्र डल में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 20,000 के करीब रहा है। तो ये तो थी बातें और जानकारियाँ जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। और अब फिर से अपनी बातों को यहीं पर रोकेंगे और आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में श्रोताओं, अब आप सुनने जा रहे हैं सूरज और चंदा फिल्म का गीत।

श्रोताओं, आपने इस गीत को एंजॉय किया आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, और आप सभी इस समय ट्यून इन है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आज आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और बातों को आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे सामने कई तरह की परेशानियाँ आती हैं। पढ़ाई का दबाव हम पर होता है, नौकरी की चिंता होती है, रिश्तों में उतार चढ़ाव और आर्थिक परेशानियाँ, कभी असफलता या भविष्य को लेकर डर, कभी कभी ये सब मिलकर इंसान को बहुत थका देते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी बात करना चाहते हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी परेशानी हमारी पूरी ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती। ज़िंदगी सिर्फ आज का नाम, आज के दिन का नाम नहीं है श्रोताओं, ज़िंदगी उन तमाम आने वाले दिनों का नाम है जिनके बारे में हमें अभी कुछ पता भी नहीं। आज अगर समय मुश्किल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला कल भी वैसा ही होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी समस्या का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ते कई बार वही दिखाई देते हैं जहां हम थोड़ी देर रुककर किसी से बात करते हैं, अपनी परेशानी साझा करते हैं और मदद स्वीकार करते हैं। इसलिए श्रोताओं, अगर कभी मन बहुत भारी हो, खुद को अकेला लगता हो, तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात ज़रूर कीजिए, और माता पिता, भाई बहन, दोस्त, शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जिस पर आपको भरोसा हो, उससे आप अपने दिल की बात ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं आपको कहीं कोई ना कोई हल ज़रूर मिलता है, और कहते हैं कि बात करने से मन का बोझ भी हल्का होता है। और साथ ही श्रोताओं, अगर आपका दिल ना करे, कभी आप परेशान हो और थोड़ा लो फील करें, तो रेडियो गुंजन धर्मशाला हमेशा तैयार रहता है आपके मनोरंजन के लिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं, मोटिवेट करती हैं, और गीत ऐसे होते हैं श्रोताओं जो कहीं ना कहीं हमारे मन का जो हाल है उसे बदलने की कोशिश करते हैं। तो गीतों के साथ जुड़िए, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़िए, और आगे भी इसी तरह से प्यारे प्यारे गीत आपको सुनवाए जाएंगे। तो चलिए, देर किए बिना आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और श्रोताओं, ये गीत आप सभी के लिए है कि आज मिले हो कल फिर मिलना, यानी कि अगर आज हम मिल लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस हो गई मुलाकात ख़त्म। नहीं, दोबारा फिर से मिलने की उम्मीद हमें ज़रूर रखनी चाहिए। स्टंटमैन फिल्म का ये गीत है श्रोताओं, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं इस गीत को। इन्जॉय कीजिए इस प्यारे से गीत को।

जी श्रोताओं, आज मिले हो कल फिर मिलना, इस गीत को अभी आपने सुना आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। और ये गीत हमें यही सिखाता है, यही बताता है कि अगर आज हम मिले हैं तो ये उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि फिर हम कल आपसे मिलेंगे। बिल्कुल श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला का समय जैसे कि आप सभी जानते हैं 11 बजे तक का रहता है, और अब हमारी जो घड़ी है वो हमें इशारा कर रही है कि अब आपसे अलविदा लेने का समय भी पास आ गया है। तो आज कार्यक्रम में हमने बातें की, गलतियों से हारना नहीं है, सीखना शुरू करना है। गलतियां हर किसी से, इंसान से हो जाती हैं श्रोताओं, और आज के कार्यक्रम में भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आपसे चाहूँगी क्षमा। और कार्यक्रम में अब समय कम है तो चलते चलते आपको सुनवाएंगे आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, उमराव जान फिल्म का ये गीत है आशा भोसले की आवाज़ में। और साथ ही श्रोताओं, इस गीत के साथ आपसे यही कहना चाहेंगे कि फिर किसी और कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुषमा को दीजिए आज के कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त। नमस्कार।

0: नमस्कार
1: बच्चन साहब आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमारा डोनेशन
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ, समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस,
1: कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस।
0: किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी?
1: बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी?
0: फंस गए ना इस झंझट में।
2: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
3: या श्योर।
2: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
4: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
5: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
6: कब देवी?
5: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
6: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
5: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
6: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
5: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
6: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
5: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
6: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
7: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
8: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
9: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
10: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
8: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
9: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
11: ये क्या कर रही है?
12: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
11: ये केले के छिलके की।
13: Oh, no.
12: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
11: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
12: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: आराम हा? आज हमारी शादी की सालगिरह थी,
1: थी?
0: तुम्हें घर जल्दी आना था,
1: आना था।
0: हम दोनों को बाहर जाना था,
1: जाना था।
0: किसी बड़े होटल में खाना खाना था,
1: खाना खाना था।
0: अब कौन बनाएगा खाना?
1: खाना मेरी जाना, खाना पकाएगा तुम्हारा दीवाना। नो टेंशन, एक्शन, अटेंशन, राइट टर्न टू किचन।

आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

0: नमस्कार
1: वत्सल साहब आइए आइए भाई है
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहां है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा है? मिल गया हमें डोनेशन ये
0: ये छोटे-छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से, हम सबको भी हर दिन करना।

0: हेलो पुलिस पुलिस,
1: कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए नहीं झंझट में?
2: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
0: Yeah, sure.
2: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर इमु बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं।

0: और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे एक कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
1: ये क्या कर रही है?
2: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
1: ये केले के छिलके की।
3: Oh, no.
2: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
1: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
2: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि आपके साथ, और आज की जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, ये मतलब सच में धमाल होने वाली है, क्योंकि आज जिस सेलिब्रिटी को, जिस अदाकारा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुद भी कुछ कम धमाल नहीं है। हवा हवाई के नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली फीमेल एक्ट्रेस थी ये, जिन्हें सुपर स्टार का टैग दिया गया था। ऑफकोर्स मैं बात कर रही हूँ श्रीदेवी की। वैसे क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी जी ने अपने करियर की शुरुआत तो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट की थी फिल्म जूली में, लेकिन रियल लाइफ स्ट्रगल इनका शुरू हुआ था 1978 में, जब इन्होंने 16वां सावन फिल्म की थी बॉलीवुड में। कुछ एक ऐसी बात थी जिसे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, और वो क्या कंफर्टेबल नहीं होंगी, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बाकी एक्टर्स भी इनकी इस एक चीज से कंफर्टेबल नहीं थे। क्या थी वो चीज बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले जैसे आज की हमारी प्लेलिस्ट के सभी गाने,

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हमारी बॉलीवुड की डीवा यानी श्रीदेवी जी की जिंदगी की अनसुनी कहानियां मैं आपको सुना रही हूं। बॉलीवुड में एंट्री तो कर ली थी श्रीदेवी जी ने, लेकिन जिस परेशानी की बात कर रही थी मैं, जिससे ना वो खुद कंफर्टेबल थी ना उनके बाकी आसपास के एक्टर्स डायरेक्टर्स कंफर्टेबल थे, वो ये थी कि उन्हें हिंदी बोलना

नहीं आता था। बड़ी दिक्कत होती थी उन्हें हिंदी में बात करने में। उनकी आवाज मोस्टली नाज डब किया करती थी। इनफैक्ट उनकी फिल्म आखिरी रास्ता में उनकी आवाज रेखा जी ने डब की थी। सबसे पहले श्रीदेवी जी ने अपने डायलॉग्स डब किए चांदनी फिल्म के लिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी जी से ज्यादा काम और प्रोफेशनल एक्ट्रेस आज तक बॉलीवुड में कोई नहीं हुई। लम्हे फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पिताजी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि वो अपने क्रू के बाकी सभी लोगों का समय बर्बाद नहीं कर सकती हैं, तो सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेके अगले दिन वो सेट पर वापस आ गई थी। इनफैक्ट उन्होंने अपने पिताजी के गुजर जाने के अगले दिन ही एक कॉमेडी सीन शूट किया था अनुपम खेर जी के साथ। तो चलिए इसी बात पर सल्यूट करते हैं श्रीदेवी जी को और सुनते हैं अगला गाना लम्हे फिल्म से लता जी की आवाज में।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। श्रीदेवी जी की जिंदगी के बारे में आज मैं आपको बता रही हूं, उन्हीं के कुछ सुपरहिट गाने सारेगामा कारवा से आपको सुना रही हूं। श्रीदेवी जी धीरे धीरे बॉलीवुड की टॉप स्टार बन चुकी थी। वो इतना बिजी होती थी कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें रिजेक्ट करने पड़ती थी। श्रीदेवी जी ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड से भी उन्हें ऑफर्स आने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी जी को स्टीवन स्पीलबर्ग की 1993 की जुरासिक पार्क में एक रोल ऑफर किया गया था, लेकिन श्रीदेवी जी अपने बॉलीवुड करियर के पीक पर थी और वो नहीं चाहती थी कि वो बॉलीवुड को नजरअंदाज करें, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में बड़ा पछताई भी थी। अब्बास मस्तान जी ने बाजीगर फिल्म के लिए भी श्रीदेवी जी को चुना था। इनफैक्ट बेटा फिल्म के लिए भी इंद्र कुमार जी की पहली चॉइस श्रीदेवी जी थी, लेकिन क्योंकि वो अनिल कपूर जी के साथ इतनी फिल्में ऑलरेडी कर रही थी तो उन्होंने इस ऑफर के लिए भी मना कर दिया था। एक तरफ जहां इतनी सक्सेस उन्हें मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ उतनी ही दुश्मनी राइवलरी भी इंडस्ट्री में बढ़ रही थी। एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनसे बात करना तक पसंद नहीं था श्रीदेवी जी को। कौन थी वो बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, लेकिन उसके पहले चांदनी फिल्म से अगला गाना।
1: चांदनी

हाँ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज के सारे गाने सारे गामा कारवा से मैं सुना रही हूँ आपको। सारे गामा कारवा जो कि एक डिजिटल ऑडियो प्लेयर है जिसमें 5000 बेहतरीन गाने और कुछ यादें भी हैं। श्रीदेवी जी की जिंदगी के बारे में मैं क्या बताऊं, काफी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन रही है ये हमेशा। उन्हें मीडिया कॉन्ट्रोवर्सीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। बॉलीवुड में उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर थी जया प्रदा जी। इतना कंपटीशन था उन दोनों के बीच में कि ये किसी से भी छुपा नहीं था। इनफैक्ट नगीना फिल्म भी पहले जया जी ही करने वाली थी, लेकिन जया जी बड़ा डरती थी सांप से, इसलिए उन्होंने ये फिल्म की नहीं। ऐसा होता था कि दोनों एक दूसरे से हाय हेलो तक नहीं करते थे। सुना है कि मकसद फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और जितेंद्र जी ने इन दोनों एक्ट्रेसेस को एक ही रूम में लॉक कर दिया था, ये सोचकर कि शायद दिस विल ब्रेक द आइस और वो दोनों एक दूसरे से बात करें। पर देन जब उन्होंने 2 घंटों के बाद दरवाजे खोले, तब भी ये दोनों रूम के 2 डिफरेंट कॉर्नर्स में बैठे हुए थे चुपचाप। राजेश खन्ना और जीतू जी का दोनों का ही प्लान चौपट हो गया और उसके बाद कभी किसी ने भी इन दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन ये नहीं, बिगेस्ट कॉन्ट्रोवर्सी श्रीदेवी जी की जिंदगी में अगर कुछ थी तो वो थी इनकी शादी को लेकर के बोनी कपूर जी के साथ। कैसे हुआ था इन दोनों के बीच में प्यार, क्योंकि बोनी जी तो पहले से शादीशुदा थे, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। उसके पहले सुनते हैं लता जी की आवाज में अगला गाना आ मेरी जान, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। और जैसा कहते हैं प्यार और वार में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कुछ ऐसी ही लव स्टोरी रही है श्रीदेवी जी की। आप जानते हैं श्रीदेवी जी को जब बोनी कपूर से प्यार हुआ था तब बोनी जी ऑलरेडी मोना कपूर के पति हुआ करते थे। इनफैक्ट कहानी कुछ इस तरह से ट्विस्टेड है कि जब श्रीदेवी जी मुंबई आई थी अपना करियर बनाने के लिए तो मोना कपूर से उनकी सबसे पहले दोस्ती हुई थी और कुछ कारणों के चलते श्रीदेवी जी अपने घर पर नहीं रह पा रही थी, इसलिए मोना जी ने श्रीदेवी जी को कहा था कि आओ आकर के एक हफ्ता दो हफ्ता मेरे घर पर रह लो। उस समय जब मोना जी और बोनी जी साथ में रहा करते थे, श्रीदेवी जी बोनी कपूर जी को अपना भाई जैसा मानती थी और मोना कपूर को अपनी बहन और अपना काफी अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन साथ में एक ही घर में रहते रहते श्रीदेवी जी को कब बोनी कपूर जी से प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। अब तो इनफैक्ट डेकेड्स ऑफ हैप्पी मैरिज रही है श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच में, तो जो है वो सब बीते जमाने की बात हो गई। लेकिन उस समय में श्रीदेवी जी को इतना बुरा भला कहा था इंडस्ट्री के लोगों ने, क्योंकि उनके कारण बोनी जी ने मोना कपूर को छोड़ दिया था, कि श्रीदेवी जी ने कुछ समय के लिए फिल्में करना भी छोड़ दिया था। आज की तारीख में लेकिन अपनी दोनों बेटियों के साथ में दोनों बोनी कपूर जी और श्रीदेवी जी काफी खुश हैं। तो इन्हीं के प्यार के नाम सुनाते हैं आपको अगला गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। साथ ही अगला एपिसोड सुनना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अमोल पालेकर जी की जिंदगी के बारे में और सुनाएंगे उन्हीं के कुछ सुपरहिट गाने।

0: क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हीरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 1 की हालत गंभीर है, जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की एला वेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार
1: बच्चन साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा है? मिल गया हमें डोनेशन ये
0: छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो।

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: या श्योर।
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की।
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा, फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिता के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.9 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: नमस्कार
1: बच्चन साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमें डोनेशन
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी। आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
2: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़े, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
3: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
4: कब देवी?
3: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
4: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
3: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
4: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
3: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
4: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
3: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
4: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
5: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
6: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
7: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
8: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
6: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
7: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
9: ये क्या कर रही है?
10: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
9: ये केले के छिलके की?
11: ओह नो,
10: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
9: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
10: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

0: कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने सी गूंज कने मैं तुहां सारे दी अपनी रेडियो दो शशि जेड़ा इस कार्यक्रम लेकर ही तुहां तक पुजी हुआ है कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम कने जुड़ी होने न क्योंकि तुहां सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से तुहां तक रहिंदा है दो ते तीन बजे तक समय के अनुसार अहम भी तुहां तक पुजी होने कने तुहां भी अपने अपने रेडियो सेट दे जेड़ा करीब हन से पुजी होने न या अपना अपना रेडियो सेट जेड़ा है से तुहां ऑन करी ले आने समय जेड़ा है से दो बजी करी दो मिनट कार्यक्रम च होइया न तो इसी कने अहां पहले अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से भी जरूर करने है कने आज तो वैसे भी संडे है संडे दा दिन तुहां वास्ते बेहतर खास होंदा कने दोपहर दा समय है दोपहर दा समय जेड़ा है से कुथी ना कुथी अहां रेस्ट भी करदे न कने मौसम दी ओर अगर नज़र दौड़ांदे न तो मौसम बड़ा सुहाना है क्योंकि मौसम जेड़ा है से हर दिन अपना जेड़ा बदलाव है से जरूर लैंदा है कने इसी कने प्यारी दे जेड़ा धूप है से खिली हुए कने मौसम जेड़ा है से बड़ा ही प्यारा है तो इसी कने अहां अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से भी जरूर कर दे न फिर ही बाकी दियां जेड़ा गल्ला न से तुहां तक ले करी आंदे न तो जरूर कार्यक्रम दा आगाज करा दे इस गीत कने तुहां सारी इन्ने सुनदे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: सुन के यरा

0: तो श्रोता तो सारे सुनिया एक गीत की शुरुआत शुरुआत फिर ते हम वापिस आई हूं अपनी गलबात उपर। तो सारे भी इस कार्यक्रम के सफर च अह कने जुड़ी सकते कने अह कने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते जेड़ा नंबर है से तुह तक पहुँचाई देना, क्योंकि नंबर तुह तक पुजेगा ताई तो इस नंबर पर मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज या कॉल जेड़े से करी सकते। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुह तक पहुँचाई तो है कने पहले जेड़ा श्रोता न से जुड़ चुके न कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना जी? जी तो अपने रेडियो सेट की आवाज जेड़ा से कम करी लेंगे जी।
1: अच्छा जी, कर लेंगे
0: जी।
1: ओ ये काम
0: जी जी।
1: अच्छा
0: जी, तो कुछ ते बोला दे कने तो हंदा ना क्या है जी?
1: दाढ़ी से बोला दे मेघनाथ
0: जी। मेघनाथ जी, क्या हाल चाल है दाढ़ी वाले दे? मौसम कदे है इस टाइम?
1: बहुत बढ़िया, धूप लगी है
0: जी। अच्छा, धूप जेड़ा है से बड़ी प्यारी लगी है ना जी?
1: हाँ जी, हाँ
0: जी जी जी। और नहीं था जी,
1: ना पकड़ा ना था
0: जी,
1: तान भी पकड़े ना उन
0: जी जी, तान ताना जो भी धूप चाहिए थी ना जी।
1: धूप चाहिए थी फसल
0: जी जी,
1: यार उठी है ना उन्होंने
0: जी।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी जी जी। निसरी ता आयो ना जी तान?
1: निसरी ही हो, कुछ कुछ पकड़ना लगी थी हो
0: जी जी, कुछ कुछ पकड़ना भी लगी पियो।
1: लेकिन हम भी आज साढ़े नाग देवता ने सेना नौ जड़ी होना है
0: जी,
1: पतेन अपने थले पर बैठना है ताँ उठना है
0: जी। अच्छा,
1: क्या नाम है सिस्टम की है चलना
0: जी जी?
1: हाँ, तेरा पूजा तेरा बगैर घूमते नहीं पड़ी सकते ना फसला
0: जी।
1: पाने को आया तो पड़ी इंद्र होने आया, तो सारे को आया नहीं पड़ती, सारा ठीक है ना मालिक है
0: जी जी। पहले तरफ पांदे ना जी, फिर उसके बाद ही
1: आप पाने में कोई पूजा हो कलेर लगते ऊपर मंगल ना
0: जी जी।
1: हाँ, इसके बाद
0: जी। अच्छा, उसके बाद ही जड़े से तो हाँ धाना जड़े से बढ़ी सकते।
1: हाँ, तो 26 तरीक लगी पौने श्राद्ध
0: जी, तो 26 तरीक ते तो श्राद्ध है ना जी।
1: हाँ, इसके पहले पहले जड़ा हुई है से हुई है नहीं था फिर नवरात्रे
0: जी, फिर ही जड़ा सारी गाल से नवरात्रे तक चली जानी ना जी।
1: नवरात्रे पर चली जानी
0: जी जी जी। तो मेघनाथ जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़ा से सुनना पसंद करके
1: सुना गया। बंदे तेरे काम मुकड़े नहीं
0: जी,
1: बंदा मुकड़ा मुकड़ा मुकी गया
0: जी जी। काम जेड़ा ने से कदी भी नहीं मुके ना जी।
1: हाँ
0: जी जी। ता तो हाँ क्या करा दे इस टाइम? रेडियो सेट ही ऑन कीते कि बाकी काम भी करा दे सोगी?
1: काम करा के ले पहले आलू लगाई थी साग भाई का
0: जी। अच्छा, आलू लगाई थे?
1: हाँ,
0: सियाड़े दे लगाई थे उन्हें आलू ना जी।
1: एक बार ये साग भाई से खाई भी लिया
0: जी। अच्छा, साग जेड़ा भाई से खाई भी लिया तो हाँ नवा लगाई दिया तो हाँ ना जी।
1: हाँ, दोबारा भी तैयार है
0: जी। तो एक बारी जरूरत होंगी ना जी, सरवा का साग तो वैसे भी तीज जो एक बारी लगाई दिया फिर ही खाते रहा।
1: हाँ
0: जी जी, कने पहला पहला जलो हनुआ लगाते ने तल तो टेस्टी भी बड़ा लगता ना जी। जी जी जी। तो मेघना जी, जरूर ये गीत तुह तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी तुहंदा भी। तो श्रोताओ तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि करने मौसम की जेड़ा जानकारी है से मेघनाथ जी ने भी तुह तक पहुँचाई है कि मौसम जेड़ा है से बड़ा ही सुहावना है, कने धूप जेड़ा है से खिली हुआ है, कने धूप तो वैसे भी मेघनाथ जी ने दस्या कि चाहिए है, क्योंकि हुण जिहड़ा धाना पकने दा जिहड़ा समय है से लग गया तां इसी कन्नै अगर धुप्प होंगी तां ही जिहड़ा धान हन तिन्हां पकणा है। तां मौसम दा जिहड़ा गल करिए तां तापमान दी जिहड़ा गल है से तुहां तक पहुँचाईंदे ने कि अजकणा जिहड़ा तापमान है से कितना है। वर्तमान तापमान की जिहड़ा गल करन तां 19 डिग्री सैलसीयस ते 21 डिग्री सैलसीयस के बीच जिहड़ा है तापमान जिहड़ा है रहना है। कन्नै अजे दा अधिकतम तापमान जिहड़ा है 24 डिग्री सैलसीयस रहने की जिहड़ा संभावना है से मौसम विभाग ने जरूर जिहड़ा है जताई होवे। कन्नै रात दे समय की गल करिए तां रात दे समय दी गल अगर अहां करन तां घिरी घिरी जिहड़ा है तापमान रही जाना है 12 डिग्री सैलसीयस ते 15 डिग्री सैलसीयस तक जिहड़ा है रही जाना है। कन्नै रात दे समय जिहड़ा है ठंडक भी महसूस हो सकती है। वैसे भी सर्दियां दा जिहड़ा मौसम है सर्दियां दे मौसम दा जिहड़ा आगाज है से जरूर होई है। कन्नै बरसात दा जिहड़ा मौसम है से बिल्कुल खत्म होई है हुण। ते इसी कन्नै तुहां मौसम कन्नै अपना जिहड़ा ख्याल है इसे जरूर रखना है। कन्नै आसमान की जिहड़ा स्थिति है आसमान की जिहड़ा मुख्य रूप से अगर अहां गल करिए तां साफ कन्नै खिला जिहड़ा मौसम ऐसे रहना है। मैं पहले भी तुहां तक पहुँचाया था कि अज जिहड़ा पूरा दिन मौसम जिहड़ा है धुप खिली रहनी है। कन्नै मौसम जिहड़ा है बिल्कुल साफ रहना है। कन्नै इसी कन्नै हवा च नमी जिहड़ा है रहनी है 64%। कन्नै जिहड़ा अगर अहां हवा की गल करिए या ठंडी जिहड़ा हवाएं न चलनियां न से चलनियां न 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जरूर मौसम की जिहड़ा जानकारी है से तुहां तक पहुँचाई थी है। कन्नै हुण अहां अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कन्नै तुहां तक ये जिहड़ा फरमाइश है यह जो पहुँचाते हैं तो जरूर ध्यान ने सुना क्योंकि ये जिहड़ा गीत है बड़ा ही प्यारा है।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया ये गीत ये भजन तो जरूर ये भजन अह पहुँचाया मेघना जी तक कने तो हाँ सारे भी इंजॉय कीता। फिर ते अहाँ वापिस आई आते न अपनी गलबात उपर गलबात अहाँ जरूर तुहां तक पहुँचानी है कने तुहां अपनी जिहड़ा छुट्टी है सभी जरूर इंजॉय जिहड़ा न करा देने न क्योंकि छुट्टी वाला जिहड़ा दिन है से अहाँ इंतजार करते न कि कलू की आ छुट्टी अहाँ दी होंगी है कने कलू की अहाँ अपने जिहड़ा बाकी काम मन घरे दे काम मन या खुद जो रेस्ट या अपनी फैमिली कने जिहड़ा समय है से जरूर बिताते न। इसी कने आज अहाँ अगर गलबात करिए गलबात अहाँ करनी है आज दोस्ती उपर कि दोस्ती दा अहाँ दे जीवन च कितना महत्व है या दोस्ती जिहड़ा से अहाँ दे जीवन च कितनी की अहम भूमिका अदा करती है। तो शो तुम दोस्ती तो सारे जो ही पता है कि जिहड़ा एक दोस्त है से हमेशा अहाँ दा साथ भी दिंदा है कने अपनी जिहड़ा दोस्ती है से जरूर अहाँ कने निभांदा है। दोस्त चुनना जिहड़ा है से अहाँ दा काम है। अगर अहाँ स्कूल जाते न तो स्कूल जिहड़ा स्कूल दा समय है या स्कूल दा जिहड़ा टाइम है तो सभी अहाँ अच्छे अच्छे जिहड़ा दोस्त हैं से चुनते न कने अगर अहाँ इसके बाद कॉलेज जाते न तो कॉलेज भी अहाँ अपने दोस्त जिहड़ा न से चुनते न कने इसी कने अगले जिहड़ा श्रोता न तिन्हां कने करते न गल बात। हेलो हेलो नमस्ते जी नमस्ते जी स्वागत है जी जी तो अपनी रेडियो सेट की आवाज कम करी लेंगे जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना। हेलो श्रोताओं कॉल बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हुई हो अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो ससी नमस्ते
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: आंजी आंजी तुहां सुनाओ
0: जी हां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी तुहां कुछ होते बोला दे कने तुहंदा ना के है जी।
1: मैं सुरेश बोला सेठाने ते
0: जी सुरेश जी क्या काम कार तुहां छेड़िया क्या करा दे आज।
1: काम कार छेड़िया ऊपर रोटी बनाई है योली
0: जी जी
1: कहना उन्हें ग्रां च छेगी वाले लगी पे बनाना
0: जी। अच्छा
1: आंजी आंजी
0: जी ता सुरेश जी आज अहां जिहड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन से करा देन दोस्ती दी।
1: आंजी आंजी
0: जी ता तुहां दे भी दोस्त होने ता तुहें क्या लगदा दोस्ती जिहड़ा से अहां दे जीवन च कितना की महत्व रखदी है।
1: ठीक ढंग दा होना दोस्त ता खरा महत्व रखदी जी
0: जी। अच्छा अच्छा दोस्त अगर अहां दे जीवन च है ता से बड़ा अहम भूमिका अदा रखदी है ना जी।
1: आंजी आंजी
0: जी जी तो तुहां क्या अपने दोस्त वास्ते अगर तुहंदे कोई दोस्त है तो तिना वास्ते क्या विचार जिहड़ा ने से रखना चाहंगे।
1: विचार तो ठीक ठाक ही रहना चाहिए तो ससी जी तो मुझे भी टाइम नहीं है आज।
0: जी जी
1: ना गाना सुनाई ने हो
0: जी कुंदिया गाना सुनने जी तुहां
1: राती सोच दी सवेरे भुली जांदी आदरे कटी दिया पी दिया
0: अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो शो तो कार्यक्रम च गल बात अहां करा देन दोस्ती दी कने इस वक्त तो हाँ फेसबुक लाइव भी जरूर दिखा दे उन्हें न जितने भी फेसबुक दे लिसनर हैं जिहड़ा हम जो दिखा दे न तिना जो भी शशि दा नमस्ते है कने तो हाँ सारे ठीक ठाक होने न कने गलबात अहां अज माटी दी मेह कार्यक्रम च करा देन दोस्ती दी। तो शो तो कछुआ कने जिहड़ा सारस है इसकी अगर गल करिए या छोटी जी कहानी यहाँ बोली सकते हैं ना कि एक जिहड़ा ऐसे तालाब हुंदा था जिस जिहड़ा ऐसे कछुआ रहिंदा था कने इसी कने से बड़ा ही धीरे धीरे जिहड़ा ऐसे चलता था कने अपने जिहड़ा बड़े सारे काम जिहड़ा ऐसे करता था इसी कने सारस भी जिहड़ा ऐसे तित्थू तिस तालाब च आई जांदा है कने से कछुए कने जिहड़ा दोस्ती ऐसे करी लैंदा है कने दोनों ही आपस च मिली जुली करी गल्ला करदे न क्योंकि दोस्त हैं जालू दोस्त हाँ बनाई लैंदे न कने दोस्ती दा जिहड़ा चुनाव वैसे हाँ बिल्कुल हाँ खुद ही करदे न ते इक दूए ने से अपनी जिहड़ा गलबात है से शेयर करदे थे कने कुछ दिन बाद जिहड़ा से जिहड़ा तालाब था तालाब दा पानी जिहड़ा से सुकना जिहड़ा से शुरू होई गया कने कछुआ जिहड़ा से क्या हुई है कछुआ परेशान जिहड़ा से हुई है कि अब हुण मैं जिहड़ा से कुत्थू जाना अगर जिहड़ा तालाब दा पानी है से सुकी जांदा है कने कछुआ सोच विचार करना शुरू हो जांदा है कि मैं जिहड़ा से हुण कुत्थू जा ते इसी कने सारस जिहड़ा से कछुए दा दोस्त था से कछुए जो थोड़ा जिहा हिम्मत दिंदा है या अपनी दोस्ती दा जिहड़ा महत्व है या दोस्ती अहंद जीवन च कितनी की अहम भूमिका अदा करती है से ज़रूर अपने दोस्त जो यही बोलता है कि चिंता मत कर मैं जिहड़ा से जिहड़ा दूआ तालाब है तिथू तक तिजो ले चलगा कने दूए तालाबे च जिहड़ा से तिजो छड्डूंगा तो सारस जिहड़ा से कछुए जो दूर जिहड़ा तालाब है तिथू तक ले जांदा है कने तिथू बड़ा सारा पानी हुंदा है तिस तालाब च तक कछुआ जिहड़ा से खुश हो जांदा है तो कछुआ जिहड़ा से अपने दोस्त यानी कि जिहड़ा सारस था तिसदा धन्यवाद करता है कने दसो तो इसते तो क्या जिहड़ा से समझे सच्ची दोस्ती सही है कि जिहड़ा अहां दा बुरा वक्त चलिया अहां दे बुरे वक्त च अहां दा साथ दिंदा है तो कुथी ना कुथी से दोस्ती जिहड़ा से अहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करती है क्योंकि अच्छा वक्त जिहड़ा से अहां जो बड़ा कुछ सिखाई करी जांदा है कने बुरा वक्त जिहड़ा से अहां जो बड़े सारे सबक दे करी जांदे न अच्छे दोस्त दी पहचान अहां तालू करी सकदे कि जालू अहां दा बुरा समय चले तां से अहां दा कितना की साथ दिंदा है कने कितना की अहां ते दूरी बनांदा है हर चीज़ दा अपना अपना महत्व है तां सीख अहां जो ये मिलदी है कि जिहड़ा सच्ची दोस्ती है से मुसीबत च कितनी के काम आई या हाँ इक्की दूए दी कितनी की मदद जिहड़ा से करदे न दसो तो तुहां भी जरूर कमेंट करी करी दसी सकदे कि ये जिहड़ा कहानी है से तुहां जो कदे ही लगी कने अपने जिहड़ा विचार हैं से जरूर रखी सकदे कने अपने दोस्तां जो जरूर जिहड़ा याद है से करी सकदे कई बार होंदा ना कि कोई भी दोस्त है से अगर अहां कन्ने अच्छा समय बितांदा है या अच्छी दोस्ती अहां कन्ने रखदा है तो जरूर अपने दोस्तां जो याद करा कने अपने बचपन दे जिहड़ा बिताए दिन नंत इन्हां जो भी जरूर याद करा कने अहां भी तुहां तक अगली जिहड़ा फरमाइश है से पहुँचांदे न क्योंकि तुहां भी इंतजार जिहड़ा से करा दे होणे न कने अहां भी इंतजार जिहड़ा से नहीं करवांदे तुहां ते कने इसी कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचानी है पर थोड़ा जिहा तुहां जो भी इंतजार तो करना ही पौना क्योंकि इंतजार हर जगह होंदा है समय जिहड़ा से भी अहां दा अहां जो इंतजार करवांदा है पर अहां समय दे अनुसार चलदे न से अहां पर निर्भर करदा है तो सुरेश जी तक अहां एक गीत पहुँचा देन तुहां सारे भी इंजॉय करा कने नहीं सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपनी बंदी

0: ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਸੀ ਗੂੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜਿਓ ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਸਭੀ ਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੋਤਾ ਨ ਸੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਿੰਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ। हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हां जी
0: जी। तुहा कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना की?
1: कोटरापी
0: जी। कुथु ते?
1: उरला।
0: उरला
1: हां जी
0: जी। ता अपना नाम भी जरूर दसी दिया जी।
1: सोबित।
0: सोबित
1: हां जी
0: जी। तो सोबित जी तुहा क्या कर दे?
1: स्कूल में जाता हूँ
0: जी। अच्छा, कुहा क्लास से जान दे तुहा?
1: फिफ्थ
0: जी। अच्छा, फिफ्थ क्लास से जड़े से तुहा पढ़ दे?
1: हाँ जी
0: जी। तो रेडियो सुना दे तुहा?
1: हाँ जी
0: जी। तो सोगी कौन कौन है तुहा कन्ने?
1: पापा मम्मी
0: जी। अच्छा, पापा मम्मी भी सुना दे रेडियो?
1: जी
0: जी जी। ता आज तो तुहन जो छुट्टी है, तो छुट्टी कदे की चली हो तुहन दी?
1: जी
0: छुट्टी जड़े से कदे की चली हो तुहन दी आज कनी?
1: ब्याह
0: जी। ता सोबित जी, आज तुह कुन दिया गीत जड़े से सुनना पसंद करके?
1: खुले खिड़की तो रखे पड़ोस में
0: जी। कुन दिया?
1: खुले खिड़की तो रखे।
0: खुली खिड़की
1: तू रखे पड़ोस ने?
0: पड़ोस ने
1: हाँ जी
0: जी जरूर। ये गीत पहाड़ी है कि हिंदी गीत है?
1: पहाड़ी
0: जी। अच्छा, पहाड़ी है। तो जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: जी।
0: तो श्रोताओं तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। दोस्ती की गल करा देना, दोस्ती जड़ा है सबसे अनमोल रिश्ता है, जड़ा हर दुख च जड़ा है से अहां दा साथ जड़ा है से दिंदा है। खुशियां जड़ा ना से अहां मिली बंडी करी जड़ा है से तिना जो एक दुए कन्ने जड़ा है से अपनी खुशियां जो इंजॉय करते न कने खुशियां या कम है उस जो भी साथ बैठी करी अगर अहां सुलझान देन तो कुथी ना कुथी सच्ची दोस्ती यहाँ जो दिखने जो मिलती है। पर आजकल दौर की गल करिए ता दोस्ती हाँ हमेशा दोस्ती पर गलबात जरूर कर देन, पर दोस्ती क्या हाँ जो सिखाती है? अच्छा समय है तो अच्छे दोस्त हाँ बना देन, अपनी हर गल शेयर कर देन। पर कुथी ना कुथी अगर अहाँ सही दोस्ती ते थोड़ा दिया नाराज़ हो जाते न या दोस्त कन्ने नाराज़ हो जाते न या कुछ भी हो जाता है तो तिथु अहाँ एक दुए की जड़ा बुराई है से करना शुरू हो जाते न। थोड़ा दिया सोच विचार करके देखा अगर तुहंदा अच्छा समय चलिया है तो तुहंदे दोस्त ने तुहंदा बड़ा साथ दिता है। अगर तुहां बुरे समय चन तमी तुहंदा साथ दिता है। अगर अगला जिहड़ा दोस्त है उस जो उसका बुरा समय चलिया है कने अहां हमेशा अपना ही सोच विचार रखते हैं तो कुथी ना कुथी अहां अपनी जिहड़ा दोस्ती है दोस्ती दे जिहड़ा महत्व है उस जो नहीं समझी पाते हैं। सच्चा दोस्त मुश्किल च नज़र आता है, तुह सारे समझी होने न जिहड़ा सच्चे दोस्त हैं। चलो अहां दा मुश्किल टाइम है या बुरा समय चलिया है तो से अहां दा साथ दिंदे न। तो जरूर इसी कने अहां अपनी कार्यक्रम दे सफर जो भी अगे बढ़ाते न कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न। ये फरमाइश अहां तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने, जेड़ा श्रोता न तिना दा नाम है शमशेर सिंह जी कने से रहने वाले न दरगाटा ते। तो तिना तक अहां भजन पहुँचा देना, तुह सारे भी इंजॉय करा।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो दो शशि कने फिर ते तो तक स्टूडियो दा जेड़ा नंबर है से पहुँचाई दिन नंबर है 7081117091 नंबर तो तक पहुँचाई ते है कने गलबात अहाँ करा दिन दोस्ती दोस्ती जड़े से रिश्ते नहीं हैं दिल जड़े से जरूर दिल ते जड़ा रिश्ते न से जरूर हैं ये ना कि सौदा है कोई महसूस अगर हाँ अपनी दोस्ती जो करते न सही सच्चा दोस्त है दोस्त जड़े से भीड़ च भी आंदा जड़ा साथ है से जरूर दिंदा है अगर हाँ गिरी आंदे न तो गिरी करी भी आंदा जेड़ा हाथ है से दोस्त आंदे पकड़ते न उठाने दा जेड़ा एहसास है से एक दोस्त जेड़ा से रखता है कने आहां जो हमेशा जीवन च सफलता दी ओर लेकरी भी आंदा एक दोस्त ही जानते है तो जरूर दोस्ती जेड़ा से आहां कने अच्छा साथ भी निभांदी है कने बुरा समय भी आहांदा जेड़ा साथ है से दिंदी है पर दोस्ती का चुनाव वहाँ किस तरीके ने करते न से यहाँ पर निर्भर करता है अच्छे दोस्त हैं तो हमेशा हाँ सफलता दी ओर जाते न तो दोस्ती का जड़ा चुनाव है क्योंकि दोस्त जड़े से हम दी जिंदगी भी सवारी दे न कने जिंदगी जड़े से बिगाड़ी भी दें दे न तो इसी कने अगर तो हाँ किसी का हमेशा अच्छा कर दे न तो बड़ी अच्छी गल है अच्छा करना जरूरी है अच्छे विचार रखना जरूरी है न चाहे अगला जिहड़ा व्यक्ति है नकारात्मक सोचा दा है तो उसके विचार भी जरूर तो हाँ बदली सकते न अगला व्यक्ति भी सोचने पर मजबूर हो या कि हमेशा हाँ बुरा बोलते न फिर भी ये जिहड़ा व्यक्ति है से अच्छा ही सोचता है हर किसी की सोच पर निर्भर करता है कि हाँ किस तरीके ने अपनी जिहड़ा सोच है से रखते न तो इसी कने अहाँ भी थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने तो हाँ जो लेकर चल देना अगली फरमाइश की ओर।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे ही सुनिया गीत फरमाइश ऐसा फरमाइश ते बाद हाँ फिर ते वापिस तो हाँ तक पूछी उन कने तो हाँ सारे भी अपने अपने रेडियो सेट के करीब जड़े से पूछी उन्हें या अपना अपना रेडियो सेट जड़े से जरूर ऑन कीते होने कने कार्यक्रम माटी दी महक सुना दे उन्हें अपनी मिट्टी दी खुशबू कन्ने जुड़ियो ने न कने अजकना जेड़ा हाँ दा विषय सेवे दोस्ती दोस्ती दा जेड़ा सुहाना सफर है उस जो तुह सारे भी याद करा दे उन्हें न चाहे से कॉलेज टाइम दे चाहे से स्कूल टाइम दे चाहे से बाकी यहाँ बोली सकते कि जिंदगी दे सफर चाहते बड़े सारे दोस्त जेड़ा न से बनी आते न तशो तो दोस्त जेड़ा न से हमेशा एक दुए का जेड़ा साथ है से निभांदे न कई बार हाँ अपने बचपन दी जेड़ा याद है उन्हें जो भी जरूर ताज़ा करते न स्कूल दे जेड़ा बिताए पल आन या पानी दे बहाने जेड़े से हाँ कुथी ना कुथी जेड़ा हाँ दा पेट लग जाता था उस दस में निकाल दे थे पानी पीने दे बहाने ने ही यहाँ जड़े से स्कूल द जेड़ा कोई भी क्लास आंदी लगी होंदी थी तो हम कुथी ना कुथी तिस द टाइम निकालने वास्ते जड़े से यहाँ पानी पीना जड़े से चले जाते थे कने अपना जड़ा समय ऐसे ज़रूर निकालते थे। इसी कने कई बार हाँ जड़े से मौज मस्ती भी करते थे छोटी छोटी जड़ा याद न तिना जो तो हाँ ज़रूर ताज़ा करा दे उन्हें कने नहीं करा दे तो ज़रूर करी लिया कने इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़िया क्योंकि समय भी अपनी रफ्तार लेकर चले तो हाँ भी समय की रफ्तार लेकर चले न कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ा तो हाँ भी थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने तो हाँ जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न थोड़ा जिहा कार्यक्रम का जिहड़ा माहौल है इसे चेंज करते हैं कने गीत तुहां तक पहुँचाते हैं।

0: श्रोताओं अहाँ गीत जड़े से थोड़ी देर वास्ते रोके क्योंकि अहाँ के जरा श्रोता न से अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं पहले कर दें तिना कन्ने गल बात क्योंकि समय जड़े से अहाँ थोड़ा देर है तो समय के अनुसार अहाँ चल दें। हेलो
1: नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: हाँ जी
0: जी। तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहांदा नाम के है जी?
1: मैं विजय कुमार बोला धर्मशाला
0: जी। विजय जी क्या हाल चाल है जी धर्मशाला में?
1: मैडम ठीक है बस धुप लगी हुई है
0: जी। अच्छा धुप्पा दा जेड़ा रूप तै से लै दे तुहां।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो विजय जी कुंडिया गीत सुनना पसंद करिए तुहां अज? जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
1: जी।

देश गीत कने सफर तो तक रहा है 2 ते 3 बजे तक कने तो सारे भी सफर करने जरूर जुड़ी सकते कने हाँ कने गलबात चिड़े से करी सकते। संडे का दिन तो हाँ फुल ऑन इंजॉय करा देने अपना जेड़ा समय है से अपनी फैमिली जो जरूर दे देने क्योंकि फैमिली जेड़े से अहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करती है कने गलबात अहां फिलहाल करा देन दोस्ती दी। सच्ची दोस्ती जेड़े से खामोश उपहार है। कुछ जेड़ा लोग हैं बिना किसी वजह जेड़े से अहां दा हाल चाल जेड़े से पूछ देन तो से कुती ना कुती अहां दी जेड़ा फिकर है से कर देन। एक छोटा जिहा शब्द है सारे ही ये पूछते हैं कदे न तो हाँ क्योंकि कुछ सेकंड वास्ते यहाँ अगर किसी कने अहां दी दोस्ती हो जाती है या अहां दे दोस्त हैं स्कूल टाइम अहां बड़ा मौज मस्ती करते न हर टाइम तिना कने रहते न कने इसी कने अगर अहां कॉलेज टाइम की गल करिए कुती ना कुती से समय भी बड़ा खास होंदा हर गल बात तिना कन्ने अपने दोस्तों कन्ने शेयर करनी तिना कन्ने अपना जेड़ा समय चाहे कॉलेज की क्लास है या कोई भी समय है जल ती कहाँ घर नहीं पुजे तल ती कहाँ दोस्ती कन्ने अपना जेड़ा समय है से बिताते न अपने दोस्तों कन्ने फिर उसके बाद घर भी पुजी आते न फिर ही एक दूए का जेड़ा फोन पर गलबात करते न क्योंकि फोन जेड़ा से फायदे भी दिंदा है नुकसान भी दिंदा है पर से यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ किस तरीके ने फोन का जेड़ा इस्तेमाल है से करते न। पर आजकने दौर की गल करिए आजकने दौर यहाँ हमेशा ही बोलते न कि यहाँ हल समय जेड़ा से नहीं है पर हाँ कुछ ही ना कुछ ही अगर अपने दोस्तों वास्ते समय निकालते न तो बड़ी अच्छी गल है कुछ समय तिना कन्ने बिताते न दोस्ती पर हाँ भरोसा जेड़ा ऐसे करी सकते न या व्यस्त जिंदगी च हाँ थोड़ा जहा समय अपने दोस्तों जो दिंदे न तो कुछ ना कुछ हाँ जेड़ा तनाव जान तनाव मुक्त हो जाते न अपनी गलबात शेयर करी करी थोड़ा जहा तनाव मुक्त जेड़ा ऐसे जरूर हो जाते न। कने जिन्हें यहाँ कॉलेज के बार या निकल जाते न या अपनी पढ़ाई जेड़ा इसे पूरी करी लेंदे न तो कुछ ना कुछ अहल जेड़ा समय ऐसे नहीं रहा है यहाँ कुछ ना कुछ समय जेड़ा इसे अपने दोस्तों जो नहीं दे पाते न तो सच्ची दोस्ती यहाँ जो यही सिखाती है कि यहाँ किस तरीके ने समय जेड़ा इसे अपने दोस्तों वास्ते निकाल देना या अपना जेड़ा समय तिना कन्ने बिता देना।

दर्शक तो इसी गीत कने तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति कने अपना जेड़ा मोबाइल फोन है से थोड़ा दिया चुकी लिया कने अपने दोस्तों जो कॉल या मैसेज जरूर करा अगर तुहां नहीं किते है, क्योंकि कई बार दोस्त जेड़ा न से अगर हाँ बिना तिना दे मैसेज का इंतजार किते या बिना तिना दे कॉल का किते इंतजार हाँ तिना जो फोन कर दें तो तिना जो भी अच्छा फील होंदा है कने खुद जो भी अच्छा फील लगता है। तो इसी कने तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति इसमें जड़े सेहत भी संपन्न होंदा है कने तो हाँ सारी अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला

0: नमस्कार
1: बच्चन साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमें डोनेशन
0: ये छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान
3: स्विच ऑफ हुआ यहाँ अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए नहीं झंझट में?
1: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान के जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: Yeah, sure.
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
5: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
4: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
5: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
4: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
5: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
6: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
7: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
8: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
9: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
7: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर इम्मू बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
8: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
10: ये क्या कर रही है?
11: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
10: ये केले के छिलके की।
12: Oh, no.
11: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
10: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
11: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप है इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने, नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्य

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार
1: वत्सन साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा मिल गया हमें डोनेशन ये
0: छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो

0: सर आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रही।
1: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड स्मार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़े, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
2: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
3: कब देवी?
2: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
3: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
2: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
3: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
2: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
3: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
2: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
3: नहीं देवी, जहाँ प्रेम बचा हो वहाँ समझो, जहाँ गलती हो वहाँ क्षमा करो, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारा मन टूटे वहाँ दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
4: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
5: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
6: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
7: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
5: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
6: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
8: ये क्या कर रही है?
9: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
8: ये केले के छिलके की?
10: Oh, no.
9: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
8: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा, और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
9: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉर कार्यक्रम लेकर ही आऊं तुम अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हो चुका हिंदी अपनी गप्पा लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी होने वाले रा सभी लाख श्रोता रा जितने भी श्रोता हूं कर देना श्रोता आज है पूजन बरसड़ जो जी यथों थोड़ी करी प्रूं पेंदा तड़ी पूजन तस ग्रामंज पूजन क्या गल बात बुने क्या इस ग्रामंज कोना सु खास मोड़वा सो तुसो जरूर दस ले। लेकिन अय्या पहले आगाज कर लेंदन कार्यक्रम रा इस प्यारे दे गीत दसोगी।

0: सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो रहा हूँ तुम तो अपना आर से रेडियो चौकी सचिन कपूर हा तो आज है बरसर पुजन और बरसर में आज सो के इंदे अम्मा भी खुरे ना ता अम्मा जी तुंदा कार्यक्रम में जो स्वागत है
1: धन्यवाद तुझ बोले
0: जी अम्मा जी तुंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद है और शो तो हमारी खास खूबी तुसु दसना चाहता खास खूबी है कि अब मैं 50 सालों की आ सो नुआचड़ी लो रहा और अम्मा तुम दी अब जो उम्र कितने
1: ओ बेवरे 17 साल आ रहे
0: 17 साल
1: हाँ अच्छा फिर बेटी है बच्ची है क्या फिर कुड़ी चाहिए तो
0: कजो की पुराने बुजुर्ग न और ना बहनी थी इतनी याद की कितने साल रहे कितने साल रहने लेकिन
1: याद न थी बाल
0: मतलब बड़ी यूनिक गल है श्रोतों की 50 साल नुआचड़ी लो रहे और लगभग लगभग है जो एस्टीमेट लाउंदे हमारा तूने तो 60-65 साल मतलब हमारी उम्र ऊपर लगो कर दिया तैया बहुत सारी गलबात करनी अम्मा हो गए लेकिन हम देने प्यारे दिया गीत

0: श्रोतो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रोर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही है तो अम्मा ए नुआचड़ी अब तो ये दसो कि तुसु सारी उम्र ना खोलने और ना खोले तय उम्र भी ना खोले लेकिन आजकल अगर है गल करने तो जहने ब्याह करिंदे ते अगले दिन नुआचड़ी कैंसिल
1: हो गई आ आ गया सुनो तो नुआचड़ी जिंदे ही गया ना
0: हां जी अच्छा
1: खाचा खर्चे ना अपने जहरा रे साबे ला खारे साबे ये धमारी क्यों के लागो रे तो तुम जा जवान ना ना वो जाना तो खबर खस खस मेरे कह रहे ने उठे कर रहे ने खस खस मेरे राम सलाम करने करू करने तो पैसा पेड़ू कर दे रुख रेट ना ना बारा लगना रुखे ना रेड़ू का बारा खेरा कुआना अपना आधा ये ना दिमाग के काम है ना
0: दिमाग के
1: काम अच्छा अस कैसी है ना अस जिसमें काम करू रहना
0: अच्छा
1: खाने ना बहुत करड़े हुंदे बने प्यारा चा चांग कि झगड़ा
0: और गल बात कर ले प्यारे दिया गीत

0: सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब हुनु गर्दन अपने होस्ट हो दो सचिन कपूर सोगे और आचा सह जी अथो पुठे बरसर मंजन ता ब्रिकमा जी हो गया है गलबात करु गर्दन। ब्रिकमा जी अबे वे बे अंदर ता पहले रे बे अंदर क्या तू सु फर्क लग
1: फर्क क्या लगंदा ना ये नवा जमाने रा मोटर लगे साये पुराने के थे जो लाज शर्मा सब कुछ थे अबे न थे ना अबे सो जरूरी ना ये ता सो ढूंढ ना पाने जट्टी ना पाने
0: बिल्कुल ठीक बोलने
1: आर्मी नौकरी में ठोकी अज मेरे ना दिमाग बड़ा तेज तू मेरा आदा ना थे थी करिए रही कमाई छी चीज लगे सारी किनारे
0: ताइए और गल बात कर ले प्यारे दे

0: रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहे और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही तो अपने रेडियो सेट में 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए जी ब्रेक में जी होगी गल कर दें इं दसो कि इं 13 साल के आसो दार अंदर गोरू चल रहे
1: गोरू चल रहे नहीं चल रहे
0: तो अमा तक ने क्या क्या मतलब यूनिक क्या क्या अलग हों तो दार अंदर जो आज नहीं
1: दार अंदर यार वो हुक्का रुक्का खाना लून सलूना दूध दही बुना सब पीते करोड़ने मानना नहीं अब डुप्लीकेट मशीन ना चली पी उरी कि क्यारा मान दी जाता दूध हों क्यारा घ्यो भी बड़ा हो रही बाजारा हों के गलत बोलूगा
0: ना ना ठीक बोलो हां तू पता होना ना
1: खड़े लूंगड़ बुजड़े हाई ना खा अमलू लोटा खाना बन बन

और यूनिक गल्ला के सो अम्मा थो जान ले हुन लेंदे ने प्यारे दे गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और हम सचिन कपूरा। अब मुझे क्या बोलना चाहते हैं, बोला
1: ये त्राई फाल भी नहीं, मैं आख मैं जोटी ना अपने मित्र सा जना होन दे सो मैं कच्ची लाई करी कमाता मत है रख अप जाए कच्ची लाके बच्चा
0: क्या
1: बात है। हां किदा नहीं जाता जा, बच्चे रख 18 महीना गिरदा।
0: अच्छा
1: हां अब क्या आदत चलना आ रही ना था
0: सियाने
1: आखरी रे उरे खाना आओ अब यहाँ टाइम चूरा कमाना
0: उम्मीद कर अपने अपने घर अंदर लेनो हूं अगला प्यारा दिया गीत।

0: रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहे और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही तो अपने रेडियो सेट में 91.2 MHz पर अमर बस पूछ गो अगर ना और कुछ गल हुनाने अपनी पुरानी
1: तो ना कोई पर पुरानी रम जो कोई पता ना ले मिठी बोरी आ
0: कोई
1: पुराना पुराना मन भूखी जी तुरे ते पुरानी गल्ला भी जड़ी हुई अगर ना होए मन जिटा ना चना ना
0: होए मन ना
1: हां ये कमल फुल्ला पर ना चना है भरड़ भरड़ भरड़ भरड़ कर ले
0: क्या बात है ता श्रोतो हम्मा तो बड़ा मजा आसू बे गलबात करने रहा और अब मैं पुरानी गल्ला भी दसी और हमारी जो यूनिकनेस आ सोए है कि अब मैं 50 साल तो किया सो नुआ चढ़े लौरे और आज अम्मा मुझे लगता कम से कम 70 साल रही अम्मा आसू लगो कर दे लगभग लगभग तो ये यूनिकनेस थे ठेर थे अम्मा हो के गलबात करे हमारा इंटरव्यू लियो है उम्मीद कर दें तुम वो इंटरव्यू पसंद आ बुना हमारी गल्ला पसंद आई बुनी है ना तो अमा वह लेंदे इजाजत चल पेंदे ना ठीक अमा धन्यवाद
1: हाँ धन्यवाद मार्ग को वे तो चुगल है
0: जी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस

और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। वहीं भारत पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी की खबर है। H-1B वीजा पर $1,00,000 का शुल्क 1 साल के लिए बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में फ्लैट खरीदने और बेचने से पहले TCP की अनुमति जरूरी होगी। सीटेट 2026 की परीक्षा अब 12 और 13 दिसंबर को होगी। एडमिट कार्ड 10 दिसंबर तक मिलने की संभावना। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की तैयारी। विशेषज्ञ समिति गठित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। हिमाचल में 2000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा। CBSE स्कूलों में भी सेवाएं देने की बात। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े एक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधों को लेकर आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ है। इसी बीच भारत को लेकर भी अमेरिका की ओर से 100% शुल्क लगाने की तैयारी की खबर सामने आई है। खबर में बताया गया है कि अमेरिका की ओर से भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा अमेरिका ने H-1B वीजा से संबंधित शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1,00,000 का शुल्क 1 साल के लिए बढ़ाया है। यह नया शुल्क 1 वर्ष तक लागू रहने की बात कही गई है। भारतीय पेशेवरों और अमेरिका में काम करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में फ्लैट खरीदने और बेचने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी TCP विभाग की अनुमति लेना जरूरी हुआ। NOC मिलने पर राजस्व विभाग रजिस्ट्री करेगा। अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत हुए निर्माण पर सख्ती के तहत ये व्यवस्था लागू की जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को पहले TCP कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। TCP विभाग ये जांच करेगा कि संबंधित भवन का नक्शा स्वीकृत है या नहीं और क्या भवन का निर्माण निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ है। निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे में बदलाव, अतिरिक्त मंजिल का निर्माण या अन्य नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सकती है। विभाग की ओर से इस प्रक्रिया का उद्देश्य नियमों के विपरीत बने भवनों और फ्लैटों की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण करना बताया गया है। TCP मंत्री राजेश धर्माणी ने भी कहा है कि जमीन और फ्लैट खरीदने बेचने के लिए TCP की सहमति जरूरी की गई है और इस विषय पर राजस्व विभाग के साथ पहले भी चर्चा हो चुकी है। CBSE ने सीटेट 2026 की परीक्षा की संशोधित तारीखों की घोषणा की है। अब यह परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर को प्रस्तावित थी लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। सीटेट का यह 22वां संस्करण होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी करनी होगी। CBSE के अनुसार परीक्षा के करीब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। वहीं सिटी स्लिप परीक्षा से लगभग 2 सप्ताह पहले जारी की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे CBSE की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें और परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारी समय पर प्राप्त करें। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 1ली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है जबकि पेपर 2 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार एक या दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति को 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक के कुलपति डॉक्टर DK वर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से जटिल, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उच्च स्तरीय तथा बहुविषयक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की योजना है। हर मेडिकल कॉलेज से 4 विभागों की पहचान की जाएगी। इन्हीं विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, आधारभूत ढांचे के उन्नयन, अतिरिक्त मानव संसाधन और वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इसके आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी।
राष्ट्रपति अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। कार्यक्रम के अनुसार 6 अक्टूबर को श्री नैना देवी और एम्स बिलासपुर, 7 अक्टूबर को मनाली और हिडिंबा मंदिर तथा 8 अक्टूबर को अटल टनल की यात्रा का कार्यक्रम। राष्ट्रपति के दौरे लेकर प्रशासन की ओर से अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल्लू में तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, सड़क व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के दौरान व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम से जुड़े सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 2000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। CBSE स्कूलों में भी सेवाएं देने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्तियां करने की घोषणा की गई है। खबर के मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले 3 माह के भीतर 2000 शिक्षकों और अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने स्कूलों से संबंधित कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। इनमें कुछ क्षेत्रों के स्कूलों को CBSE स्कूलों में परिवर्तित करने की बात शामिल है। दिग्गल, ढूंढी और जयनगर के स्कूलों को CBSE स्कूलों में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राज्य में स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अमेरिका की नई वीजा और शुल्क संबंधी घोषणाओं से लेकर हिमाचल प्रदेश में फ्लैट की रजिस्ट्री, सीटेट परीक्षा की नई तारीख, मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राष्ट्रपति के प्रस्तावित हिमाचल दौरे और शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आप भी सुन। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। धन्यवाद।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: नमस्कार
1: वत्सन साहब आइए आइए आइए
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए
1: डोनेशन जरूर जरूर कहाँ है डोनेशन बॉक्स
2: ये रहा है? मिल गया हमें डोनेशन ये
0: छोटे छोटे काम यही तो है बड़ा दान

0: समझ गए?
1: हाँ, समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फते हैं पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: अब इनके पिताजी, थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: Yeah,
1: sure. सर आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
3: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
4: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
5: कब देवी?
4: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
5: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
4: लेकिन जिस

0: का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
1: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
2: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
3: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
1: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
2: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
4: ये क्या कर रही है?
5: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
4: ये केले के छिलके की?
6: Oh, no.
5: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
4: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
5: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

फ्रिक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोता, आज का गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। श्रोता, दिन है छुट्टी का और आज सभी श्रोता जो है अपने घर पर आराम विश्राम और बहुत सारे काम होते हैं घर पर करने के लिए भी, और घूमना फिरना ढेरों काम हम सभी को अपने अपने हिसाब से होते हैं वो हम करते भी हैं। और खैर, जब शाम होती है तो इंतज़ार रहता है कि रेडियो गुंजन से गुड इवनिंग कार्यक्रम आने वाला है, और जो कुछ रेगुलर श्रोता है वो अपने समय के अनुसार अपने रेडियो सेट ऑन कर लेते हैं और सुनना शुरू कर देते हैं रेडियो गुंजन को। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, सुनना चाहिए क्योंकि हर दिन हम ढेर सारी जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं और लेकर

आते हैं प्यारे प्यारे गीत, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए थोड़े से संगीत की सुरों की ओर बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो उंचन धर्मशाला।

लेकिन श्रोताओं, हमें तो अपने सारे श्रोताओं का ध्यान रहता है, ख्याल रहता है, और हम उन्हें बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तभी तो चले आते हैं हर दिन आपसे मिलने और ढेर सारी बातें भी आपके साथ साझा करने। इन्हीं बातों और गीतों के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजकल के दिनों की। आजकल आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी हुई है और सभी ने अपने अपने घर पर गणेश जी को विराजमान किया हुआ है। अपने अपने हिसाब से हम उनका विसर्जन भी करते हैं। कुछ लोग 3 दिन रखते हैं, कुछ दिन 5 दिन रखते हैं, कुछ लोग 7 दिन रखते हैं और कुछ लोग 9 दिन के बाद उनका विसर्जन कर देते हैं। और गणेश जी की पूजा अर्चना हम अपने घरों पर सभी करते हैं। आपने देखा होगा आते जाते भी कि बाज़ारों में भी लोगों ने जो है मूर्ति की स्थापना की हुई है और हर दिन हम उनका गुणगान करते हैं। श्रोता, त्यौहार हमारी आस्था, परम्परा और सामाजिक उत्सव का हिस्सा है। मूर्ति विसर्जन की परंपरा को पर्यावरण के अनुकूल बनाना हम अपनी आस्था निभाने के साथ नदियों, तालाब तथा जल स्रोतों को भी हमने सुरक्षित रखना है। तो श्रोताओं, आज हम इको फ्रेंडली मूर्ति विसर्जन की बात फिलहाल कार्यक्रम में करेंगे और थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कार्यक्रम में अपने श्रोताओं का मनोरंजन नहीं करवाते हैं तब तक कार्यक्रम हमें भी अधूरा लगता है। तो ये कार्यक्रम को पूरा करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। इस संडे की शाम में आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से बता दूं कि श्रोताओं, आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो श्रोताओं, हम गणेश उत्सव की बात कर रहे थे। गणेश उत्सव में आजकल के दिनों में हम सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं और मूर्ति विसर्जन भी किया जाता है और अपने अपने हिसाब से हम लोग विसर्जन भी करते हैं। तो विसर्जन की बात से ही याद आया कि इको फ्रेंडली विसर्जन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पारंपरिक प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल युक्त मूर्तियों से होने वाला जल प्रदूषण को रोकने के लिए इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल मूर्ति विसर्जन एक बेहतरीन और आवश्यक कदम है। इको फ्रेंडली विसर्जन क्यों जरूरी है श्रोताओं? तो जल प्रदूषण की रोकथाम की बात करें तो प्लास्टिक जो है ऑफ पेरिस और केमिकल वाले रंग पानी में घुलते नहीं हैं, जिससे जलीय जीव और पानी की गुणवत्ता को भारी नुकसान पहुंचता है। प्राकृतिक तत्वों का विलय की बात करें तो इको फ्रेंडली मूर्तियां सादी चिकनी मिट्टी, प्राकृतिक रंगों और बीजों से बनाई जाती हैं जो कि पानी में आसानी से घुल जाती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें हम अपने पर्यावरण को खराब होने से बचा सकते हैं। तो थोड़ा सा फिर से हम अपने कार्यक्रम में रुकते हैं क्योंकि हमें पहुँचाना है आप तक कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

शायद इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ शो तो हम आज बात कर रहे थे इको फ्रेंडली विसर्जन के बारे में, क्योंकि गणेश पूजा आजकल चली हुई है। हम सभी जानते हैं, सबने अपने घरों पर गणेश जी को विराजमान किया हुआ है, तो इनकी जब अंतिम विदाई करते हैं तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। विसर्जन से पहले भगवान की सामान्य पूजा करें, आरती करें और उन्हें फल मोदक का भोग लगाएं। अब इको फ्रेंडली विसर्जन की शो तो हम बात कर रहे हैं, तो टब या बाल्टी का हम उपयोग कर सकते हैं। घर पर एक बड़े साफ पानी से भरे टब या बाल्टी में मूर्ति को धीरे धीरे रखें ताकि वह पूरी तरह डूब जाए। मिट्टी का विसर्जन हो रहा है तो कुछ घंटों में जब प्राकृतिक मिट्टी पूरी तरह से पानी में घिर जाती है तो इस पवित्र घोल को हम अपने घरों के गमलों या पौधों में डाल सकते हैं, और ध्यान रखें कि इसमें कोई केमिकल या प्लास्टिक का सामान ना हो। बीजों वाली मूर्तियों की बात करें, यदि आपकी मूर्ति में पौधों के बीज यानी सीड्स लगे हैं तो घुलने के बाद उस मिट्टी को गमलों में रखकर नया पौधा तैयार हो सकता है, जिससे हरियाली बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इको फ्रेंडली विसर्जन जो है हम सभी के लिए पर्यावरण के अनुकूल रहता है। तो अपनी बातों और जानकारियों के साथ फिर से कार्यक्रम में आप सभी को ले चलते हैं, और कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ तो आइए एंजॉय करते हैं।

श्रोता, इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस वक्त चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। तो गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम इको फ्रेंडली विसर्जन की बात कर रहे हैं। ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं श्रोताओं, तो आओ सजावट की बात करें तो विसर्जन से पहले प्लास्टिक, थर्मोकोल और कृत्रिम फूलों की मालाओं को मूर्ति से अलग कर दे और कचरे में सही जगह डाल दे। स्थानीय प्रशासन के नियमों के अनुसार काम करें। प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, झीलों में विसर्जन से जुड़े अपने स्थानीय नगर निगम या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों पर हमेशा पालन करें और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो श्रोता उसमें हमें फ़ायदा ही होता है। तो गणेश जी की पूजा अर्चना करने का फ़ायदा तो तभी है जब गणेश जी की सही से विसर्जन किया जाए और उनकी कृपा दृष्टि जो है हम सभी पर बनी रहे। जी हाँ श्रोताओं, जब हम किसी भी काम को बड़े ही प्यार से, बड़े ही शिद्दत से करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा जो है हम सभी पर बनी रहती है। और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि भगवान की दया दृष्टि अपने भक्तों पर, सभी श्रोताओं पर बनी रहे। गणेश उत्सव जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें मूर्ति विसर्जन के लिए इको फ्रेंडली तरीका सभी को अपनाना है और गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की परंपरा प्रमुख जो होती है जल निकाय में निभाई जाती है। लेकिन मूर्तियों के इस्तेमाल होने वाला प्लास्टर जो है कहीं नहीं पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, खासकर मीठे पानी के जल स्रोत, घरेलू उपयोग और जल पेय की ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आस्था के साथ साथ श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण का हमें ध्यान देना है। समय की मांग है ये, और मूर्ति निर्माण में हमेशा प्राकृतिक मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रासायनिक रंगों के बजाय प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल रंगों का उपयोग बेहतर विकल्प रहता है। तो जानकारी और भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में एंजॉय करते हैं। कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इसी गूंज के साथ हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी जानकारियां आप तक पहुंचाना बाकी हैं। तो श्रोताओं, विसर्जन की बात कर रहे थे। पहले हमने बात की कि विसर्जन के समय बहुत सारे फूल, बहुत सारी पत्तियां आर्टिफिशियल हमने इस्तेमाल की होती है, उन्हें तो दोबारा क्या इस्तेमाल करना, उन्हें तो हम जो है नष्ट भी कर देते हैं या फिर कूड़े में डाल देते हैं। और कुछ घरों पर आर्टिफिशियल फूल की बजाय हम लोग फूल जो होते हैं असली वाले वो लगाते हैं, और पत्तियां आम की पत्तियों से भी सजाते हैं। अन्य जैविक सामग्री जो है उन्हें हम अलग कर सकते हैं, और खाद बनाने में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें पानी में ना फेंके तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पानी में फेंक कर भी तो गंदगी ही बनती है। और गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन की रस्म पारंपरिक विधि से प्रमुख जल निकाय में ही की जाती है, और जल निकाय मीठे और खारे पानी का समूह होता है। और साथ ही साथ मीठे पानी के निकाय घरेलू उपयोग के लिए पेयजल का प्रमुख स्रोत होता है। ऐसा करने से नदियों और तालाबों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है, और विसर्जन के बाद मूर्ति के अवशेष अन्य कचरे का उचित निपटारा भी संभव होगा। प्रशासन को भी ऐसे कृत्रिम टैंकों की पर्याप्त व्यवस्था, साफ सफाई और कचरे के वैज्ञानिक निपटारे पर ध्यान देना चाहिए। और त्योहारों की खुशी तभी शुद्ध और सार्थक हो सकती है जब हम आस्था के साथ प्रकृति को भी सुरक्षित रहे। इको फ्रेंडली विसर्जन अपनाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो श्रोताओं, छोटे छोटी बातों का ध्यान रखे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, और पर्यावरण को बचाना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल इस समय हमारी तो जिम्मेदारी बनती है अपने श्रोताओं तक गीत पहुंचाने की। तो आइए मिलजुल कर इंजॉय करते हैं कार्यक्रम के सभी प्यारे से।

91.2 MHz पर श्रोता, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आज फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में आइए कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। राज्यपाल श्री गोविंदर गुप्ता ने शनिवार सायं सिद्धवाड़ी स्थित चिन्मय तपोवन आश्रम संदीपनी हिमालय में आयोजित चिन्मय अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम चिन्मय मिशन के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा तथा पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के प्रेरणादायी जीवन एवं योगदान को समर्पित है। इस अवसर पर चिन्मय मिशन के 75 वर्षों की यात्रा, आध्यात्मिक गतिविधियों और समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी स्मरण किया गया। राज्यपाल ने कहा है कि चिन्मय मिशन में भारतीय आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वामी चिन्मयानंद जी के विचारों से देश विदेश में लोगों को भारतीय दर्शन, संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने का कार्य भी किया है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान, सेवा, साधना और मानव कल्याण की समृद्ध परंपराएं रही हैं और ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ समाज के सकारात्मक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियाँ और भी हम कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो कुंचन धर्मशाला के साथ।

जी हाँ बिल्कुल श्रोता, और सपने कई बार अपनों के ज़रूर आ जाते हैं, और जब सपने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारे जो अपने हैं वो हमें याद कर रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो परिवार के सदस्य हो। बिल्कुल श्रोता, इसी तरह से आपका और परिवार वालों का दोस्तों का प्यार बना रहना चाहिए। तो आइए इसी प्यार के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सेहत से जुड़ी कुछ और बातें आपके साथ साझा करते हैं। श्रोता, कई बार क्या होता है कि खान पान की कोई चीज़ जितनी हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है उतना हमारे शरीर को नुकसान भी देती है। अब हम बात थोड़ी सी आज ड्राई फ्रूट्स के बारे में करेंगे कि कहने को ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं और हमारी सेहत के साथ जुड़े भी होते हैं, हमारी सेहत को फ़ायदा भी देते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करने पर नुकसानदायक भी हमारे लिए सिद्ध होते हैं। सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स की हम आज बात कर रहे हैं श्रोताओं, ये शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ कई सारी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। इसमें हेल्दी फैट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी, फाइबर और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर इनका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन किया जाए तो सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। कहने का मतलब श्रोता ये है कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें, खाने पीने के लिए हो या हमारी अपनी आदत बना ले, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाती ही है। तो फिलहाल इस समय हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे सेहतमंद आहार का हिस्सा माने जाते हैं। इसमें सीमित मात्रा में खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है और शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन किसी भी अच्छी चीज़ की तरह ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी जोर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स खाने से कैलोरी बढ़ने के साथ साथ कुछ लोगों की पाचन संबंधी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। तो श्रोता, हम तो नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रोता किसी भी तरह से परेशान हो, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, उस प्यारे से जीवन को एंजॉय करते रहें, प्यारे से कार्यक्रम को एंजॉय करते रहें। तो आइए फिर से कार्यक्रम में एंजॉय करते हैं। कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत, तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इसी प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी फिर से विषय की ओर, जो हम बात कर रहे थे। तो आज हम बात कर रहे थे ड्राई फ्रूट्स के बारे में कि कितने हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कितने नुकसानदायक हैं। ड्राई फ्रूट्स में पानी की मात्रा कम होने के कारण इसमें पोषक तत्व और कैलोरी अपेक्षाकृत अधिक केंद्रित होती है। मुट्ठी भर से ज़्यादा ड्राई फ्रूट रोज़ाना खाने पर अनजाने में भी कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है। अगर आपकी शारीरिक गतिविधि कम है तो लंबे समय तक ऐसा करने से वजन बढ़ने का जोखिम भी हो सकता है। तो भी जी हाँ श्रोताओं, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है उतना ही इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, और ज़रूरत से ज़्यादा हम जब सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। हम चाहते हैं हमेशा वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो उनकी सेहत से जुड़ी हो और फ़ायदा दे। तो श्रोता, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम रह सकते हैं सेहतमंद। अपनी सेहत के साथ साथ गीत संगीत सुनना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो ये सुनते हैं कार्यक्रम के अगला प्यारा सा गीत।

0: पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चिंताएं हो रहा है।
1: हाल के समय में उन्होंने आपदा में देश को सूचित किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट कम करने के लिए सशक्त कदम उठाना आवश्यक। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश गंझू मारा गया है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ हुई। ब्रिजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी का शीर्ष कमांडर था।

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारिवन महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने आज अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों में श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं अपनी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है और सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सेहत की बात में ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ी सी आपके सामने बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को हर कोई चाहता है, जानता है कि सेहतमंद होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मौजूद फाइबर पाचन के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में फाइबर लेने से कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना, ऐंठन या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर किशमिश, सूखे अंजीर, फलों का ज़्यादा सेवन पेट पर भारी पड़ सकता है, इसलिए अपनी डाइट में पहले से फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखें तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना बेहतर होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, अपने शरीर में कमी हो जाए उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर हमारा खान पान सही होगा तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी कमियों से हम बच सकते हैं, लेकिन खान पान में भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ सेहत को नुकसान पहुंचाती है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, ख्याल कर रखें। फ़िलहाल इस समय हम रखते हैं आपका ध्यान और ख्याल और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा संगीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हम ड्राई फ्रूट की बात कर रहे हैं श्रोताओं। तो बाज़ार में मिलने वाले कई ड्राई फ्रूट्स भुने हुए या नमकीन होते हैं। ऐसे उत्पादों का नियमित और ज़्यादा सेवन उनकी कुल सोडियम खपत बढ़ा सकता है, इसलिए बिना नमक वाले मेवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और नमक भी श्रोताओं आप सभी जानते हैं कि हम सभी के लिए सही नहीं होता है, ज़्यादा मात्रा में नमक भी नहीं खाना चाहिए। और ब्लड शुगर की बात करें श्रोताओं तो सूखे मेवे में प्राकृतिक शुगर होती है, जो इसमें पानी कम करने के कारण थोड़ी मात्रा में शुगर जो है अपेक्षाकृत अधिक मिल जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट है या ब्लड शुगर की समस्या वाले लोगों को ड्राई फ्रूट्स खाते समय इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल श्रोताओं हमें देना है अपने कार्यक्रम की और ध्यान, और आपको सुनवाना है कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज के कार्यक्रम की बात करूं तो श्रोतो, आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो ड्राई फ्रूट्स की बात श्रोतो थोड़ी सी हम और करेंगे, क्योंकि चलते चलते जब बातों का सिलसिला शुरू होता है तो कई सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो जैसे गीत चल रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लेने से एलर्जी भी हो जाती है। कुछ लोगों को नट्स जैसे बादाम, काजू, अखरोट या पिस्ता से एलर्जी हो जाती है। ऐसे लोगों में ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद खुजली, त्वचा पर चकते, होंठों या चेहरे पर सूजन, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो एलर्जी के लक्षण गंभीर हो तो तुरंत हमें चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। और जब हमें पता लग जाता है कि किसी चीज़ को खाने से हमें एलर्जी होती है तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे श्रोता क्या है कि उन्हें पता होने के बावजूद भी उस चीज़ का सेवन कर लेते हैं। होता क्या है कि तकलीफ खुद को ही ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर ले ताकि आपको तकलीफ ना हो। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे श्रोता हमेशा जो हैं बिना तकलीफ से रहें, इंजॉय करें इस प्यारे से जीवन को, इंजॉय करें इस कार्यक्रम को। तो बढ़ते हैं फिर से गीत संगीत की ओर।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार हम फिर से वापिस आ चुके हैं। अब बहुत सारे श्रोताओं के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि कितने ड्राई फ्रूट्स हमें लेने चाहिए, कितने ड्राई फ्रूट्स की मात्रा हमारे लिए सही होती है। जी हाँ, बिल्कुल श्रोताओं, ड्राई फ्रूट्स की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, कैलोरी, ज़रूरतों की पूरी डाइट पर निर्भर करती है। आमतौर पर एक छोटी मुट्ठी जो है 20 या 25 से 30 ग्राम नट्स रोज़ाना कई स्वस्थ वयस्कों के लिए एक व्यवहारिक मात्रा मानी जाती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ड्राई फ्रूट्स को संतुलित डाइट का हिस्सा बनाएं, ना कि भोजन का विकल्प। बिना नमक वाले नट्स चुने, मेवों को सीमित मात्रा में शामिल करें और पर्याप्त पानी पिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी की बीमारी है, नट एलर्जी या कोई अन्य विशेष स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी डाइट में बदलाव से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो श्रोताओं, छोटी छोटी बातों का ध्यान जब हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम सेहतमंद रह पाते हैं। तो इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के ठीक बाद हम आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओ, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब केवल एक फल नहीं है बल्कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था की धुरी है। राज्य के हजारों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। इससे इर्द गिर्द परिवहन, पैकेजिंग, भंडारण, प्रसंस्करण तथा विपणन जैसी अनेक गतिविधियां संचालित होती हैं। हिमाचल में बागवानी को मजबूत करने केवल उत्पादन बढ़ाने का विषय नहीं है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इसी दृष्टिकोण के साथ राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बागवानी क्षेत्र में उत्पादन से लेकर विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर बल दे रही है। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियां भी हम और भी आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में कुछ और स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा कर लेते हैं। उपमंडल स्तरीय योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक 21 सितंबर को प्रातः 11 बजे राजकीय डिग्री कॉलेज इंदौरा के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मलिंदर राजन करेंगे और बैठक में उपमंडल स्तर पर विभिन्न विकासात्मक योजना तथा कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के साथ साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: बेल आइकन को प्रेस करें।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हुआ है 7:45, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: विकास कार्य ठप, उच्चतर शिक्षा में सुधार विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन कुल्लू में संपन्न, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और भाजपा ने प्रदेश सरकार से कर्ज प्रबंधन के साथ आय बढ़ाने की कार्य योजना को सार्वजनिक करने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल ही के दिनों में आई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। नई दिल्ली में आज पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है। राष्ट्रपति ने स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवा पीढ़ी को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं में संस्कार, राष्ट्रभक्ति, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना समय की आवश्यकता है। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हुए उन्हें आधुनिक ज्ञान व तकनीक के साथ आगे बढ़ने के अवसर देने की जरूरत है। इस अवसर पर सांसद राजीव भारद्वाज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का संदेश भी पढ़ा गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ऊना जिले की बालीवाल पंचायत में आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के समारोह में उन्होंने कहा कि पंचायत में करीब 125 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विकास की दृष्टि से पिछड़ रहे बालीवाल क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाने का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में आज भाजपा के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने केवल 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जबकि वर्तमान सरकार 3.5 वर्ष में ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले चुकी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके बावजूद भी प्रदेश में कोई नया विकास कार्य नहीं हुआ है।
3: एक साल का कार्यकाल जो बचा है वर्तमान सरकार का, इसमें काम की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं। जब उम्मीद नहीं है तो जिससे उम्मीद है उसके साथ काम करिए। वो उम्मीद अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भाजपा की बनेगी, आने वाले समय में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, उससे उम्मीद रखिए। एक साल छोड़ दीजिए, 4 साल हम जो छूटे हुए विकास कार्य है उनकी पूर्ति करेंगे।
1: उच्चतर शिक्षा में सुधार विषय पर सम्मेलन आज कुल्लू में संपन्न हो गया। इस अवसर पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचार, संसाधनों का बेहतर उपयोग, तकनीक का समावेश और विद्यार्थियों को समाज व समुदाय से जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कार्यवाही का प्रयास किया जाएगा। मेरा युवा भारत किन्नौर द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय रिकांगपियो में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों और इससे होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को लेकर जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने भी नशे से दूर रहने और समाज को इस बुराई से मुक्त कराने का संकल्प लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @ AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
4: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
5: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
4: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका लक्ष्य रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री के अनुसार प्राकृतिक खेती को लेकर चल रहा जन आंदोलन आने वाले वर्षों में व्यापक रूप में सफल होगा।
7: हमारे गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर देश का ये जन आंदोलन भी आने वाले वर्षों में व्यापक रूप से सफल होगा। जो किसान इस बदलाव से जितने जल्दी जुड़ेंगे वो सफलता उतने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समाज, सबके आधार में हमारी कृषि व्यवस्था ही है। भारत तो स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश ही रहा है। इसलिए जैसे जैसे हमारा किसान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी कृषि उन्नत और समृद्ध होगी, वैसे वैसे हमारा देश आगे बढ़े।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, खेल और आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार हो रहा है। पीएम श्री राजकीय विद्यालय घुमारवीं में आज जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है। भाजपा ने प्रदेश सरकार से कर्ज प्रबंधन के साथ आय बढ़ाने की कार्य योजना को सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट विश्लेषण के अनुसार प्रदेश का राजस्व घाटा 6,577 करोड़ जबकि राजकोषीय घाटा 9,698 करोड़ रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आगामी वर्षों में राजस्व और राजकोषीय घाटा कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। शिमला जिले में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अभियान जारी है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 से 15 वर्ष तक की बच्चियों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यशपाल रांटा ने बताया कि शुरुआत में टीकाकरण अभियान को लेकर अभिभावकों में कई भ्रांतियां थी, लेकिन विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों की शंकाओं को दूर किया जा रहा है।
8: ये जो वैक्सीन है इसको हम लगाते हैं 14 से 15 साल के बच्चों। ये जो वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये 97% कॉज है सीए सर्विक्स का। सीए सर्विक्स जो होता है यूट्रस का वो पार्ट है जिसको हम बच्चा देने के मुंह का कैंसर भी बोलते हैं। ये जो आपका वायरस 97% केसेस में कॉज है, जल्दी अगर ये वैक्सीन लग जाएगी, जैसी हमारी दूसरी वैक्सीन होती है वैसे एंटीबॉडीज बनेंगी और वो जो भी हमारी बेटी है वो इस इन्फेक्शन से बच जाएगी।
1: शिमला जिले में अब तक 1874 बच्चियों का HPV टीकाकरण किया गया है। कुल्लू जिला प्रशासन ने पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल से सैंज क्षेत्र की रैला पंचायत में हुए रिसाव के मामले में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। कार्यवाहक उपायुक्त व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर रिसाव को पूरी तरह रोक लिया गया है। उन्होंने कहा कि रिसाव के कारण जमा हुए मलबे को हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी तैनात कर दी गई है और स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं में संस्कार व सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करने पर दिया बल। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप भारी कर्ज लेने के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य ठप। उच्चतर शिक्षा में सुधार विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन कुल्लू में संपन्न। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और भाजपा ने प्रदेश सरकार से कर्ज प्रबंधन के साथ आय बढ़ाने की कार्य योजना को सार्वजनिक करने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
0: श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत।
9: सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: नमस्कार
1: वत्सन साहब, आइए आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा, मिल गया हमें डोनेशन। ये
0: छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान।

0: समझ गए?
1: हाँ, समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या? असली नोट?
3: ब्रो, ये फटा है।
4: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: हेलो पुलिस पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए ना इस झंझट में।
1: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
2: या श्योर।
1: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो।

0: मदद करना, मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
1: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
2: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
3: कब देवी?
2: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
3: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
2: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
3: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
2: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
3: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
2: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
3: नहीं देवी, जहां प्रेम बचा हो वहां समझो, जहां गलती हो वहां क्षमा करो, लेकिन जहां बार बार तुम्हारा मन टूटे वहां दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
4: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
5: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
6: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
7: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
5: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
6: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
8: ये क्या कर रही है?
9: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
8: ये केले के छिलके की।
10: Oh, no.
9: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
8: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
9: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार बुलेटिन। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। वहीं भारत पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी की खबर है। H-1B वीजा पर $1,00,000 का शुल्क 1 साल के लिए बढ़ाया गया। हिमाचल प्रदेश में फ्लैट खरीदने और बेचने से पहले TCP की अनुमति जरूरी होगी। सीटेट 2026 की परीक्षा अब 12 और 13 दिसंबर को होगी। एडमिट कार्ड 10 दिसंबर तक मिलने की संभावना। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की तैयारी। विशेषज्ञ समिति गठित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। हिमाचल में 2000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा। CBSE स्कूलों में भी सेवाएं देने की बात। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर प्रतिबंधों से जुड़े एक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रतिबंधों को लेकर आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ है। इसी बीच भारत को लेकर भी अमेरिका की ओर से 100% शुल्क लगाने की तैयारी की खबर सामने आई है। खबर में बताया गया है कि अमेरिका की ओर से भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की संभावना को लेकर चर्चा चल रही है। इसके अलावा अमेरिका ने H-1B वीजा से संबंधित शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1,00,000 का शुल्क 1 साल के लिए बढ़ाया है। यह नया शुल्क 1 वर्ष तक लागू रहने की बात कही गई है। भारतीय पेशेवरों और अमेरिका में काम करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में फ्लैट खरीदने और बेचने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी TCP विभाग की अनुमति लेना जरूरी हुआ। NOC मिलने पर राजस्व विभाग रजिस्ट्री करेगा। अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत हुए निर्माण पर सख्ती के तहत ये व्यवस्था लागू की जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को पहले TCP कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। TCP विभाग ये जांच करेगा कि संबंधित भवन का नक्शा स्वीकृत है या नहीं।

और क्या भवन का निर्माण निर्धारित नियमों के अनुसार हुआ है। निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे में बदलाव, अतिरिक्त मंजिल का निर्माण या अन्य नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सकती है। विभाग की ओर से इस प्रक्रिया का उद्देश्य नियमों के विपरीत बने भवनों और फ्लैटों की खरीद फरोख्त पर नियंत्रण करना बताया गया है। पीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने भी कहा है कि जमीन और फ्लैट खरीदने बेचने के लिए टीसीपी की सहमति जरूरी की गई है और इस विषय पर राजस्व विभाग के साथ पहले भी चर्चा हो चुकी है। सीबीएसई ने सीटेट 2026 की परीक्षा की संशोधित तारीखों की घोषणा की है। अब यह परीक्षा 12 और 13 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। सीटेट का यह 22वां संस्करण होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अब नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी करनी होगी। सीबीएसई के अनुसार परीक्षा के करीब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। वहीं सिटी स्लिप परीक्षा से लगभग 2 सप्ताह पहले जारी की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सीबीएसई की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें और परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारी समय पर प्राप्त करें। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है, जबकि पेपर 2 छठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए होता है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार एक या दोनों पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। समिति को 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक के कुलपति डॉक्टर डीके वर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से जटिल, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उच्च स्तरीय तथा बहुविषयक चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने की योजना है। हर मेडिकल कॉलेज से 4 विभागों की पहचान की जाएगी। इन्हीं विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, आधारभूत ढांचे के उन्नयन, अतिरिक्त मानव संसाधन और वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और इसके आधार पर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रपति अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगी। कार्यक्रम के अनुसार 6 अक्टूबर को श्री नैना देवी और एम्स बिलासपुर, 7 अक्टूबर को मनाली और हिडिंबा मंदिर तथा 8 अक्टूबर को अटल टनल की यात्रा का कार्यक्रम। राष्ट्रपति के दौरे लेकर प्रशासन की ओर से अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल्लू में तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, सड़क व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के दौरान व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम से जुड़े सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में 2000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। सीबीएसई स्कूलों में भी सेवाएं देने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नियुक्तियां करने की घोषणा की गई है। खबर के मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अगले 3 माह के भीतर 2000 शिक्षकों और अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने स्कूलों से संबंधित कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। इनमें कुछ क्षेत्रों के स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों में परिवर्तित करने की बात शामिल है। दिग्गल, भूमती और जयनगर के स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही राज्य में स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अमेरिका की नई वीजा और शुल्क संबंधी घोषणाओं से लेकर हिमाचल प्रदेश में फ्लैट की रजिस्ट्री, सीटेट परीक्षा की नई तारीख, मेडिकल कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राष्ट्रपति के प्रस्तावित हिमाचल दौरे और शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आपने सुनी। इसी के साथ आज का समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: बच्चन साहब, आइए आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा, मिल गया हमें डोनेशन। ये
0: छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान।

0: समझ गए?
1: हाँ, समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: असली नोट
3: ब्रो, ये फटा है।
4: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: हेलो पुलिस
1: पुलिस, कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए नहीं इस झंझट में?
2: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
3: या श्योर।
2: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
4: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
5: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
6: कब देवी?
5: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
6: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
5: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
6: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
5: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
6: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
5: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
6: नहीं देवी, जहां प्रेम बचा हो वहां समझो, जहां गलती हो वहां क्षमा करो, लेकिन जहां बार बार तुम्हारा मन टूटे वहां दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
7: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
8: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
9: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियां, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियां, दही, घी और तेल।
10: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
8: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं, आप ही बताएं फिर क्या करें?
9: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
11: ये क्या कर रही है?
12: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
11: ये केले के छिलके की?
13: Oh, no.
12: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
11: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
12: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने,

0: नमस्कार
1: वत्सन साहब, आइए आइए आइए।
0: हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए।
1: डोनेशन? जरूर जरूर, कहाँ है डोनेशन बॉक्स?
2: ये रहा, मिल गया हमें डोनेशन। ये
0: छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच

0: समझ गए?
1: हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है।
0: चलिए एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम।
2: ये क्या है? असली नोट?
3: ब्रो ये फटा है।
4: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ नया नोट मिलेगा?
4: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

0: हेलो पुलिस पुलिस,
1: कितनी बार बोला माइंड योर ओन बिजनेस।
0: किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुझे ही एम्बुलेंस बुलाने की क्या जरूरत थी? बुलाया तो बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की क्या जरूरत थी? फंस गए नहीं इस झंझट में?
2: आप इनके पिताजी? थैंक यू सर। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए जो इंसान की जान की कीमत समझता है। हिंदुस्तान का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में। एक सेल्फी।
3: या श्योर।
2: आइए सर, आप ये रोड एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो, मदद करना मत डरना, पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी।
4: सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाला व्यक्ति गुड समार्टन अब सभी प्रकोप की परेशानियां जैसे अस्पताल, पुलिस विभाग और अदालती प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। आइए आगे बढ़ें, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करें।
5: स्वामी, मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी कब होता है जानते हैं?
6: कब देवी?
5: जब कोई अपना, जिसके साथ उसने अपनी हर बात बांटी, एक दिन वही उसकी खामोशी का कारण बन जाता है।
6: हाँ देवी, पर मनुष्य को ये समझना होगा, हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
5: लेकिन जिसे दिल से अपना माना हो, उसे कैसे भूल जाए?
6: भूलना जरूरी नहीं है, बस ये स्वीकार करना सीखो कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ चलने के लिए नहीं, कुछ सबक देने के लिए आते हैं।
5: लेकिन जब उनकी याद आए तो?
6: याद आने दो, बस उनके लौटने की उम्मीद में अपनी जिंदगी मत रोक देना।
5: तो क्या हर बदलते रिश्ते को छोड़ देना चाहिए?
6: नहीं देवी, जहां प्रेम बचा हो वहां समझो, जहां गलती हो वहां क्षमा करो, लेकिन जहां बार बार तुम्हारा मन टूटे वहां दूरी बनाना भी कभी कभी प्रेम ही होता है, लेकिन अपने आप से।
7: माँ, अब तो 6 महीने का हो गया हूँ। माँ, कुछ मजेदार खाने को दो ना।
8: ओले ओले ओले, चल तेरा हाफ हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खिचड़ी तुझे खिलाते हैं।
9: 6 महीने के शिशु को दूध के साथ साथ पौष्टिक खाना भी चाहिए, जैसे गाढ़ी दाल के साथ चावल, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और तेल।
10: नन्हे मुन्ने करेंगे नखरे, माँ से कहना धीरज रखे, धीरज रखे, धीरज रखे, माँ से कहना धीरज रखे।
8: रोते हैं, उगलते हैं, नचाते हैं, दौड़ाते हैं, खाना देखकर ये मुंह बनाते हैं। आप ही बताएं, फिर क्या करें?
9: अरे बच्चे की भूख के इशारे समझो, खेल कूद से बहला फुसला के खाना खिलाओ, घर के सदस्य की मदद से बच्चे को बहला के खिलाओ, पहले दूध पिलाओ फिर खाना खिलाओ, और जब बच्चा बीमार पड़ जाए, खाना ना खाए, तब उन्हें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में माँ का दूध पिलाएं, और जब बच्चा ठीक हो जाए तो उसे 1 कटोरी खाना ज्यादा खिलाएं, ताकि बच्चा फिर से हट्टा कट्टा तंदुरुस्त हो जाए।
11: ये क्या कर रही है?
12: अरे इसकी सुंदर सुंदर फोटो खींच के इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे डालूंगी।
11: ये केले के छिलके की?
13: Oh, no.
12: ये केले का छिलका नहीं है, आर्ट है, आर्ट।
11: अबे पागल हो गया, इसमें क्या है आर्ट जैसा? और ये तो सड़ चुका है, इसमें बदबू आ रही है इतनी। इसकी जगह ना इंस्टा फेसबुक नहीं है, डस्टबिन है।
12: जब पता है इसकी जगह डस्टबिन है, तो पिछले 2 दिन से ये टेबल पे क्या कर रहा है?

0: boy like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना लेकर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति संगीत।

अपना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से अपनी रेडियो दोस्त पिंकी के साथ। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।